मीडियम वेव है 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, पहली सभा के कार्यक्रमों की शुरुआत में आइए सुनते हैं चिंतन।
1: हम, आप और हम सभी हमेशा से यह सुनते आए हैं, जल ही जीवन है। यह कहावत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। कोई भी जीव हो, सभी का निर्माण पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी से हुआ है। प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में 65%

0: से 70% तक जल की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर में विद्यमान होकर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संजीवनी का काम करती है। जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम जीवित रहने या जीवन जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। सृष्टि का क्रमिक विकास जल से ही प्रारंभ माना जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बहुमूल्य संसाधन है जल। इसे धरती की जीवन धारा भी कहा जा सकता है। पृथ्वी पर समस्त जीवित और अजीवित तत्व का मूल अंतर जल का प्रधानत्व है। जो भी जल युक्त है वह जीवित है। जल जल सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि यह एक सुखी जीवन जीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जल के बिना दुनिया का मतलब मानव जीवन का अंत, संपूर्ण सृष्टि का अंत। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिमखंडों ने जिन नदियों को जन्म दिया, उनमें कई नदियां हमारे जीवन में धमनियों की भांति ही कार्य किया है। इन नदियों के तट पर हमारे पूर्वजों ने सभ्यता का विकास कर अनेक संस्कृतियों को जन्म दिया। इन नदियों के तटों के प्रांगण में जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ, वह आज भी हमारे भूत, वर्तमान और भावी जीवन को सिंच रहा है। जल की अति प्राचीन काल से ही पूजा की जाती है, इसे सम्मान दिया जाता है। हमारे धार्मिक पर्वों पर लाखों लोग नदियों और जलाशयों के तट पर एकत्रित होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उसमें उतरने से पहले जल को स्पर्श कर, मस्तक पर लगाकर, प्रणाम कर आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है, जो आज भी श्रद्धालुओं में प्रचलित है। जल रूपी एक देवता को मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले देवता का सर्वोच्च स्थान और विशेषण दिया गया है। पृथ्वी के समस्त नदियों, तालाब, कुएं, सरोवर को हमारी भावनाओं ने समझा और उनके साथ सौहार्द का भाव उत्पन्न किया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चली आ रही। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही था। पूरी दुनिया में जलाशयों को ही जल का स्थायी स्रोत माना गया है। यह नदियां मात्र जल का स्रोत ही नहीं थी, बल्कि उसके तटीय क्षेत्र समस्त प्राणियों के, विशेषकर मानव जाति के शरणास्थल हो गए। हमारी तो सभ्यता ही नदी सभ्यता है। संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, वह नदियों के तटवर्ती क्षेत्र ही रहे। अर्थात संपूर्ण विश्व के जीवन गति, प्रगति और विकास की प्रेरणा स्रोत जल रूपी नदियां ही रही हैं। जहां जहां नदी तट, वहां वहां तीर्थ स्थल बन गए। ये पवित्र नदियां धार्मिक दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय रही। विश्व मानवता की जन्मदात्री और धात्री भी रही हैं। हमारे देश में तो आज भी प्रत्येक धर्मानुयायी प्रातः काल जब स्नान करता है, तो देश की प्रमुख पवित्र नदियों का स्मरण कर उसके प्रति अपनी आस्था की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहता है, गंगे च यमुने चैव गोदा सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। सृष्टि में ईश्वर के सभी रूप जल के सदृश हैं और जल की तीर्थ या तारण हार प्रकृति ही ईश्वर रूप में पूजनीय है। ईश्वर जल की तरह अलग अलग रूप और रूपकों में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष होता रहता है। घट घट तीरथ क्षण क्षण अवतार की आस्था और परंपरा का रूप लेता है। जल अमूल्य है। जल की एक बूंद की कीमत कोई क्या जाने, किसी प्यासे से पूछो। निश्चित ही सबसे ज्यादा पुण्य का भागी वही होता है जो किसी प्यासे को पानी पिलाता है। जल प्रकृति में कई रूपों, तरल, ठोस और वाष्प रूप में सर्वत्र मौजूद है। अवस्था परिवर्तन करने का जल का यह स्वभाव उसके उपयोग की आयामों को विस्तृत कर देता है। जल यदि बर्फ बनकर न जमता, तो गंगा जैसी सदा निरा नदियां न होती, और जल यदि वाष्पित न होता, तो धरती को वर्षा जल से न सींचती। जल रूपी ओस की बूंदों का वर्णन कवियों ने न जाने कितने रूपों में करते आए हैं। गंगा जैसी पवित्र एवं मोक्ष दायिनी नदी, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, प्रदूषण के कारण अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। नदियों के जल को प्रदूषित करना ईश्वर का अपमान है। हमारे जीवन दायिनी नदियां हमारी पहचान है। इसलिए आज हम सब का यह कर्तव्य है कि हम ये संकल्प लें कि हम इसे प्रदूषित और अपवित्र नहीं होने देंगे। आखिर हम कब समझेंगे कि जल ही तो जीवन है, इसे बेवजह बर्बाद होने से भी बचाएं। क्योंकि आज हम जल बचाएंगे तो कल यह हमें बचाएगा। क्योंकि जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम चिंतन के बाद आकाशवाणी पटना की अगली प्रस्तुति है कृषि चर्चा। विषय है भूमिगत कीड़ों का नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं

और भूमि के अंदर रह करके ही वे नुकसान करते हैं। वो ऊपर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है अंकुरित होने वाले पौधे के ऊपर या बड़े पौधे के ऊपर दिखाई देता है। आज हम चर्चा उन्हीं कीड़ों के बारे में करेंगे कि कैसे उनका नियंत्रण आप करेंगे, कैसे उनकी आप पहचान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दीमक की, क्योंकि दीमक और गड़ार दो ही कीड़े हैं जो कि जमीन के अंदर रहते हैं और आपकी फसलों को, आपके बीजों को नुकसान करते हैं। दीमक कीड़ा जो होता है वो सफ़ेद या धूसर रंग का होता है और इनकी संख्या जो है खेतों में काफ़ी होती है। अंकुरित होने वाले बीजों को ये खा जाते हैं या छोटे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों को भी नुकसान करते हैं, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं या अंकुरित होने वाले पौधे जो हैं वो अंकुरित ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बीज इनके द्वारा खा लिया जाता है, बीजों में संक्रमण इनके द्वारा कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में मक्के की खेती काफ़ी होती है।

0: दीमक और गड़ार दो ही कीड़े हैं जो कि जमीन के अंदर रहते हैं और आपकी फसलों को, आपके बीजों को नुकसान करते हैं। दीमक कीड़ा जो होता है वो सफ़ेद या धूसर रंग का होता है और इनकी संख्या जो है खेतों में काफ़ी होती है। अंकुरित होने वाले बीजों को ये खा जाते हैं या छोटे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों को भी नुकसान करते हैं, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं या अंकुरित होने वाले पौधे जो हैं वो अंकुरित ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि बीज इनके द्वारा खा लिया जाता है, बीजों में संक्रमण इनके द्वारा कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में मक्के की खेती काफ़ी होती है और मक्का जो है प्रमुख भोजन है दीमक कीड़े का। मक्के के बीज जब आप खेतों में डालते हैं तो उस समय इनका आक्रमण जो है वो शुरू हो जाता है और बीजों को ही खा जाते हैं, खास करके जहाँ पर सेलुलोज होता है, चाहे कागज़ का टुकड़ा हो, लकड़ी हो या मक्का हो, वहाँ पर इनका आक्रमण काफ़ी होता है। वैसे ही गड़ार कीड़े भी होते हैं, उनका भी आक्रमण ज़्यादा होता है। तो अब बात ये आती है कि जब आपको ये पता चल गया कि आपके खेत में ये दीमक कीड़ा लगा हुआ है तो कैसे उसका आप नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण करने के लिए कुछ सामान्य सी विधियां हैं, जैसे कि गर्मी में यदि आप खेत की जुताई पहले से ही कर देते हैं तो तेज़ धूप के कारण इनके अंडे और ये नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जब आपने मक्का खेत में बो ही दिया और इस कीड़े के लगने की आशंका है तो आप खेत में जगह जगह पर मक्का के जो भुट्टे होते हैं, भुट्टों का जो लेढ़ा निकलता है, जो अंदर का भाग निकलता है, उनको रख दें तो वहाँ पर क्या होगा कि कीड़े जो है वहाँ ज़्यादा इकट्ठे होंगे और उन्हें आप पकड़ करके नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम रासायनिक नियंत्रण भी करते हैं जब भी कोई कीड़ा हमारे खेत में लगता है, तो आप क्लोरपाइरीफास दवा जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास दवा 20 cc में आती है, ये हरे रंग की दवा है जो बोतल में आती है, और उसको पानी में घोल करके जुताई के समय खेत में दें या पौधे की जड़ों के नज़दीक दें तो इस कीड़े का आक्रमण जो है वो नहीं होता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं उस समय नीम या करंज की खल्ली, नीम या करंज की खली यदि आपको मिल जाए तो जुताई के समय ही खेत में इसे आप डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि इससे कीड़े का अपने आप जो है वो नियंत्रण हो जाता है, यानी कि आने वाली फसल में या अंकुरित तो होने वाली फसल में ये कीड़े जो है वो नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप जो है भूमिगत कीड़े, खास करके जो अपना दीमक कीड़ा है या गड़ार है, कटुआ है, ये सब कीड़े जो हैं उनका नियंत्रण आप अपने आप से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कीड़ा लगे ही नहीं, उसके लिए कुछ उपाय पहले से ही करने होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि गर्मी के मौसम में जब आप अपनी जुताई कर देते हैं खेत की तो गर्म वातावरण में ये कीड़े जो है वो नष्ट हो जाते हैं और आपकी आने वाली फसल को नुकसान नहीं करते हैं। उसके अलावा खेत में जो है कूड़ा करकट, यानी कि फसलों के जो अवशेष हैं उन्हें जमा नहीं होने दें क्योंकि वे जब जमा होते हैं तो उस पर भी कीड़ों के लगने की आशंका ज़्यादा होती है और वो कीड़े जो लगते हैं तो फिर मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं और घर बनाने के साथ ही आने वाली फसल को ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इस तरह से कुछ सामान्य से उपाय हैं जिनका कि आप करके, जिनको आप करके आने वाली जो आपकी फसल है उनको भूमिगत कीड़ों से बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे। विषय था भूमिगत कीड़ों का नियंत्रण। जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़

0: करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले ये देश वंदना।

देश वंदना के बाद कार्यक्रम में अब सुनिए भजन। कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

कार्यक्रम में अगला भजन तुलसी कुमार के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब सुनिए रामचरितमानस पाठ।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: रामचरितमानस पाठ अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से किया गया। श्रोताओं अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। विषय है टीकाकरण, ध्यान देने योग्य बातें। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो NMCH के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और ये हमें बताएंगे कि बच्चों के टीकाकरण में हम किन बातों का ध्यान रखें।
2: प्रसव हमारे यहाँ 80% प्रसव जो है संस्थानों में हो रहा है,

0: तो बच्चे की छुट्टी से पहले जन्म पे 3 टीके लग जाने चाहिए और वहाँ पे एमसीपी कार्ड बनता है, वो बनवा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ ये भी प्रथा है कि पहले बच्चे जो हैं यूजुअली नानी घर होते हैं, तो कभी स्थान बदलने के बाद वो एमसीपी कार्ड छूट जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे का जन्म से लेकर के 5 साल तक का टीकाकरण नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में भी होता है, ये सुनिश्चित करें कि हर बार आप अपना कार्ड ले जाएं और वहाँ सारे टीकाकरण कराएं। जन्म पे बच्चे को BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो के ड्रॉप लगते हैं। फिर बच्चा जैसे ही 1.5 महीने का होता है तो उनको पेंटाभैक, मतलब 5 रोग उसमें एक साथ होता है, DPT का, एक एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो हम बच्चों में निमोनिया, गले नाक कान का इन्फेक्शन करता है वो, और हेपेटाइटिस बी, और साथ ही साथ इंजेक्टेबल पोलियो। पोलियो पहले ओरल देते थे, अब इंजेक्शन देते हैं पोलियो का, वो लगता है। और साथ में एक रोटा वायरस वैक्सीन जो दस्त का सबसे प्रमुख कारण है, उस वो दिया जाता है। और उसके बाद एक और इंजेक्शन जो लगता है वो निमोकोकल वैक्सीन, वो भी बच्चे में संक्रमण करता है इनकी। और बच्चा फिर तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, आप हर बार कार्ड ले जाएं और इसको छोड़े नहीं। अगर अभिभावक ये सारे प्रक्रियाएं करते हैं तो उनको एक अच्छा अभिभावक माना जाता है। तो कोशिश ये करना है कि अपने कार्ड हमेशा साथ रखें और जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएं और टीके लगवाएं। उसके बाद 9वें महीने में MR का टीका लगता है, प्लस हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का भी टीका लगता है। उसके बाद बच्चा जब 1.5 साल का होता है और 15 महीने का होता है तो MMR और DPT का टीका रिपीट होता है, और फिर वही 5 साल में भी रिपीट होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी भी टीकाएं हैं ये ऐसे बीमारियों के लिए हैं जो ठीक, मतलब अगर एक बार संक्रमण हो जाए तो बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम पूरे अच्छे तरीके से टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कराने के दौरान बच्चे में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसमें बुखार, सूजन या दर्द की संभावना होती है। तो आजकल पारासीटामोल का ड्रॉप, वो जो बहन या दीदी या सिस्टर्स जो आपको बताते हैं उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करें। बुखार नहीं भी है लेकिन अगर बच्चा दर्द में है और दूध कम पी रहा है तब पर भी उसे दिया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट में भी कुछ टीकाएं अभी मार्केट में आ रही हैं और शायद भविष्य में सरकार भी उसे लगाएंगी।
1: वो कौन कौन सी बीमारियां हैं?
0: जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं तैयारी करने जाते हैं और वहाँ बाहर का दूषित खाना खाते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड की संभावना बढ़ जाती है बाहर के खाने से, तो इसके भी टीकाकरण हैं। और साथ ही साथ एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के भी टीके अवेलेबल हैं, और कोशिश करना चाहिए कि वो करवा लिए जाएं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि जिस दिन टीकाकरण की तारीख है या जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण होना है,
0: जी
1: किसी कारण से आप उस दिन नहीं जा सके।
0: जी कोशिश यही करनी है उस स्थिति में जब आपने अपने डोजेज मिस किए हैं तो 7 दिन के अंदर उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के लगवा लेना चाहिए। और मिस्ड डोजेज के भी उनके पास अपने शेड्यूल होते हैं, अगर मान लीजिए कोई जन्म पे ही नहीं लगाया तो भी वहाँ शेड्यूल बना होता है, आप वो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन टीकाकरण छोड़ना नहीं है, ये आपको गांठ बांध लेना है।
1: हर हालत में टीकाकरण कराना है।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना टीकाकरण ध्यान देने योग्य बातें। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

में गजल। शास्त्रीय संगीत का समय होगा सुबह 7:25 पर। कलाकार होंगे पंडित जसराज। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा सुबह के 9:10 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे सुबह के 10:00। इसके तुरंत बाद 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल। कलाकार होंगे मोहम्मद असलम। तबले पर संगत करेंगे डॉक्टर श्याम मोहन। हारमोनियम पर अभिषेक पाठक। स्पेनिश गिटार पर संगत करेंगे प्रीतम कुमार मिश्रा। दिन के 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। बिहार का लोक संगीत बज्जी का लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी जगत। कार्यक्रम उद्योग जगत का समय होगा दोपहर 1:05। 1:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार 2:00 होंगे। इलाकाई खबरें 2:05 पर। 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हालचाल। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे आबिदा परवीन की आवाज।

सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी बुलेटिन आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। 6:10 पर संध्या आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे।

0: ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। 6:55 होने वाले हैं, अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और इसके तुरंत बाद 7 बजे
1: EM। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मञ्चस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्गविद्युतौद्योगिकी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य

0: राज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम है भी 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दिन के इतिहास से। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म वर्ष 1900 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का जन्म वर्ष 1908 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1931 में हुआ था। श्रोताओं, मेनोपॉज हर महिला के जीवन का एक स्वाभाविक चरण है।

आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र में जब मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। इस दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे गर्मी लगना, रात में पसीना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, हड्डियों का कमजोर होना जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे समय में योग एक संजीवनी की तरह काम करता है। मेनोपॉज में होने वाली समस्याएं में शारीरिक हॉट प्लेसेज, जोड़ों में दर्द, वजन बढ़ना, थकान, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भूलने की समस्या आदि होती है। योग इसमें बहुत हद तक मदद करता है। हमने पहले ही कहा कि यह एक संजीवनी की तरह काम करता है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और सांस का संतुलन है। मेनोपॉज में योग के अनेक फायदे हैं। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम दिमाग को शांत कर हार्मोनल संतुलित करते हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम शरीर को ठंडक देते हैं। तारासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन जैसे आसन वजन संभालने वाले हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। शवासन, योग निद्रा और ध्यान से नींद अच्छी आती है और चिंता कम होती है। सूर्य नमस्कार और कपालभाति मेटाबॉलिज्म तेज करके वजन बढ़ने से रोकते हैं। मेनोपॉज के लिए 5 जरूरी योगासन हैं। भुजंगासन जो रीढ़ और थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। दूसरा है सेतु बंधासन, यह थकान और तनाव कम करता है, हार्मोन संतुलित करता है। तीसरा बालासन है जो मन को शांत करता है और चिंता दूर करता है। विपरीत करनी, यह आसन पैरों की सूजन और थकान घटाता है, रक्त संचार को बेहतर करता है। और पांचवा है शवासन, पूरे शरीर को आराम अनिद्रा दूर करता है। योग में सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। हाई बीपी, घुटने या कमर दर्द हो तो कठिन आसन नहीं करना चाहिए। हमेशा खाली पेट प्रशिक्षक की देखरेख में योग करना चाहिए। सांस को रोकने वाले प्राणायाम डॉक्टर से पूछकर ही करें। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं होती बल्कि महिला जीवन का एक नया अध्याय होता है। योग इस बदलाव को सहज और सकारात्मक बनाता है। अगर आप रोज 30 मिनट योग, सही खानपान और सकारात्मक सोच रखती हैं तो कोई भी महिलाएं मेनोपॉज के बाद भी स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी सकती हैं। इसलिए कहा भी गया है, योग अपनाओ, मेनोपॉज को हंसकर निभाओ।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो रहा है। तो इस वायदे के साथ कि कल हम फिर प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम हालचाल को लेकर 7:05 पर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम हालचाल अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे आबिदा परवीन की आवाज़ में गज़ल।

आबिदा परवीन की आवाज़ में अभी आप गज़ल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे भजन। कलाकार होंगे पंडित जसराज, राग अहीर भैरव।

Gama baga bama gama ni da ni ba da.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भजन। कलाकार थे पंडित जसराज, राग था अहीर भैरव। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: आकाशवाणी एट 90। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

0: 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के

0: निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो कूड़े कचरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई आईटीबीपी आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया।

0: गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में कोविड 19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल

0: किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
4: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi

0: The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Uttarakhand and parts of the northeastern region during the next 2 to 3 days. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thanks, Shagun. All dailies lead with Iranian President Masoud Pezeshkian's formal invitation to Prime Minister Modi to attend the former Supreme Leader's funeral. Iran invites Prime Minister for Khamenei's July funeral. India yet to decide, writes the Tribune. Shiv Sena UBT to lose Parliament office, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons, but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC-1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी पहले इस वक्त की खास खास खबरें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपु लेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखाधड़ी की शिकायतों का भी जायजा लिया

0: जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी से सख्ती से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चार रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में चार बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वजीर आजम ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए ईजीओ एफआईआर मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाज को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफुजात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत उन हकूक को खत्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी के तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वजीर आजम लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जांच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकावत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम कर रही है जो इमरजेंसी के निफास के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकावत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
0: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपु लेक दर्रे के नज़दीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज़्यादा ताजिरों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाज़त दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपु लेक दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से नबी ढांग के नज़दीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से

0: नाविडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था, लेकिन 2020 में कोविड-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैनुल अक्वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वज़राए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोज़ा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन ममालिक के तवानाई के वज़रा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तावुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तावुन और पायदारी का क़याम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा, जो देही तरक्की में मसनू जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मजकूरा एक रोज़ा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती ज़रूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग, दी इंडिया AI मिशन, सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकत दार देही तरक्की को फरोग देने में मसनूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक विफाखी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिला अदालत की जज डेनिस कैस्पर का ये फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा अबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए चुनाव ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, न कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिनयान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD

0: ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से चौथे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद टी20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
5: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
4: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया की

0: undergone 9 revisions. नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला पोर्टल आधारित या नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड से बाहर जिले के नजदीकी प्रखंडों में होगा।
1: हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका है उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुरको से 1,00,000 करोड़ रुपए के ऋण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुरको के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद टाउनशिप क्षेत्रों में सुनियोजित अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाए। कैबिनेट में कुल 45 एजेंडों की स्वीकृति प्रदान की गई। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने

0: संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संविधान हत्या दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इधर भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें कल से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। गौरतलब है कि विभाग ने 22 जून को बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लागू करने की स्वीकृति दी थी। संपत्ति कर में वर्ष 1995 के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी। बिहार लोक भवन द्वारा तैयार नियमावली के अनुसार साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य होगी। ये परीक्षा 175 अंक की होगी, जबकि 25 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार में 13 अंक ऑन स्पॉट शिक्षण कौशल टेस्ट के लिए तय किए गए हैं। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बक्सर का अधिकतम तापमान 42.1, पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा औरंगाबाद का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इन सभी स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी

0: किया गया। इन सभी स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि पर 27 जून तक पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे तक ही करने का आदेश दिया है। प्रदेश में धान और गेहूं की बुआई तथा कटाई के समय विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कोई भी नया काम नहीं होगा। कृषि विभाग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक ये सुनिश्चित करेंगे कि कृषि मौसम के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत में कोई नया काम नहीं हो। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थिति में ही इस नियम में छूट दी जाएगी। प्रदेश में अगले महीने की 15 तारीख को महाकवि कालिदास की जयंती और वंदे मातरम समारोह का आयोजन होगा। कला संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में संगीत नाटक अकादमी और कला संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस दौरान देशभक्ति आधारित नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अधीक्षण अभियंता के पास विभिन्न स्थानों पर 13 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईओयू को छापेमारी के दौरान 5 लाख रुपए से अधिक नगद और लगभग 39 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले हैं। वहीं विभिन्न बैंक खातों में लगभग 90 लाख रुपए की राशि पाई गई है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 29 जून से 30 सितंबर तक जंगल सफारी समेत पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वीटीआर प्रशासन के अनुसार मॉनसून अवधि में बाघों के प्रजनन काल, वन मार्गों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने कल पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ये जानकारी दी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मदन सहनी ने भी कल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल बीरपुर के जवानों ने सीमा चौकी कुनौली क्षेत्र से 1,44,000 रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी के रुपए गिनने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने महिला पुलिस अवर निरीक्षक और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो जिले के अररिया संग्राम थाना का है। इधर जिले की लदनिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग गांव से 68 किलो गांजा जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। दैनिक भास्कर ने भरत मुठभेड़ मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, जस्टिस विनोद सिन्हा करेंगे मुठभेड़ की जांच, एसडीपीओ राजेश हटाए गए। प्रभात खबर लिखता है, उपद्रवियों को बिना वारंट नकेल कसने का डीएम को अधिकार। अखबार लिखता है, 1 जुलाई से अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में लागू रहेगा आदेश। दैनिक भास्कर

खेल की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, इंग्लैंड आयरलैंड में वैभव को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम, 16 वर्ष से कम उम्र की खिलाड़ियों को वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम साझा करने की अनुमति नहीं। राष्ट्रीय सागर मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखता है, खास महल की भूमि पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। आज अखबार की शब्द हैं, हर 3 माह में 3 पंचायतें होंगी बाल श्रम मुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हर अमल है देखिए पहचान तो कुरान की। और ये शेर बतौर खास देखिए कि पंजतन के नूर बा

जब शहर सुनी ने मजाहिर के ये तकरीर, बचपन का ख्याल आया तो रोने लगे शब्बीर। फरमाया के मजबूर हूँ जो ख्वाहिश तकदीर, दिखलाता है ए बाप की फुरकत फलक के पीर। छूटता है तो फिर यार मुवाफिक नहीं मिलता, सब मिलते हैं पर आशिक सादिक नहीं मिलता। फरमा के ये छाती से लगाया कई बारी, रुखसत जो किया आंखों से आंसू हुए जारी। घबरा के

चलता नहीं मर कर इसी मैदान में गड़ूंगा, तलवार न होएगी तो हाथों से लड़ूंगा। फिर ना थके बस पड़ने लगी तीरों की बौछार, देखा जो उधर पुश्तों पे नैजे कर लगावार।

हाय मेरे आशिक मेरे शहदा मेरे यावर, हाय हाय मेरे सलमान मेरे मुग़दाद बबूज़र, हाय हाय मेरे रुस्तम मेरे ज़ैगम मेरे सफदर, हाय हाय मेरे अम्मार मेरे मालिक अश्तर, ताज़ीस्त तेरे हिजर में फरियाद करूँगा, ताज़ीस्त तेरे हिजर में फरियाद करूँगा, खंजर के तले भी मैं तुझे याद करूँगा, फिर लाश दरे खेमे पिलाए शहे आलम, सर पीट के फरमाया के

बेकस का बिछा कर सफे माता, यारों ने को उसके जनो फरजंद नहीं है, मजलूम मुसाफिर के अगर हैं तो हम ही हैं। यारों ने को उसके जनो फरजंद नहीं है, मजलूम मुसाफिर के अगर हैं।

0: हमी है। जब शैन सुनी हजरत इब्ने में तकरीर, जब शैन सुनी इब्ने मजाहिर की ये तकरीर।
1: सामीन आप सुन रहे थे सोज सोज खाते जनाब सैयद जर्रार हुसैन। अब पेश खिदमत है एक मकाला, मौजू है आशूरा का पैगाम इंसानियत के नाम। मकाला खां हैं जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान।
2: तारीख़ में बाज़ अय्याम ऐसे हैं जो महज तारीख के सफ़ात का हिस्सा नहीं बल्कि ईमान, किरदार और इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा होता है। योम आशूरा भी उन्हीं अजीम बाबरकत दिनों में से है। ये दिन अल्लाह की नुसरत, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की जद्दोजहद, सब्र इस्तकामत और हक की सरबुलंदी की याद ताज़ा करता है। जिस दिन उसी महीने से इस्लामी साल का आगाज़ होता है, ये महीना अशुरे हरम में से है। इस महीने को मोहतरम मुअज्ज़ज़ उसी दिन करार दिया गया है जिस दिन इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि अहले अरब के यहाँ मुहर्रम का महीना बड़ा काबिल एहतराम था। उसका एहतराम ज़माने जाहिलियत की तारीख तरीन दौर में भी बाकी था और उस ज़माने के ताजिर हजरात भी अपने सामान तजारत को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने के लिए अपने तजारती सफ़र का आगाज़ भी वो उन्हीं महीनों में किया करते थे ताकि उनका सामान सही व सालिम मंजिल तक पहुंच जा सके। मुहर्रमुल हराम का दसवां दिन यौम आशूरा अपने दामन में बेशुमार तारीखें दीनी और रूहानी असबाक समेटे हुए हैं। ये दिन हमें सब्र तकवा, इसार व इत्तहाद उम्मत, इत्तहाद उम्मत और हर हाल में दीन इस्लाम के उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। इस्लाम की आमद के बाद भी इस माह मुबारक की हुर्मत व अजमत तकद्दस को उसकी साबका हालत में बरकरार रखा गया। अरबी लोग ज़माने जाहिलियत में भी इन महीनों की ताज़ीम करते थे। इस्लाम ने भी इन महीनों की अजमत हुर्मत को बाकी रखा। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जिसका मफहूम यह है कि इन महीनों में तुम अपने जानवरों पर भी जुल्म मत किया करो। हदीस शरीफ में माह मुहर्रमुल हराम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया गया, ठीक इसी तरह जैसे काबा शरीफ को बैतुल्लाह और हजरत सालिह अलैहिस्सलात वस्सलाम की ऊँटनी को नाकतुल्लाह फरमाया गया। मुहर्रमुल हराम की रफ़त व बुलंदी के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इस महीने की निस्बत अपनी जानिब फरमाई, फरमाया शहरुल्लाह। यूं तो सारे ही दिन, सारे महीने, सारे साल को अल्लाह ताला ने पैदा किया। जिस तरह 8 दिनों में सूरज निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, उसी तरह मुहर्रम के महीने में भी सूरज निकलता है और गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला किसी ख़ास दिन को या किसी ख़ास महीने को अपनी तरफ मंसूब करता है तो उससे इसके तकद्दस में इजाफा हो जाता है। जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया रोज़ा मेरे लिए है, तो उसकी हुर्मत और अजमत में इजाफा हो गया। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी दिन को अपनी तरफ मंसूब फरमा देते हैं तो उसकी हुर्मत में इजाफा हो जाता है। इसी तरह मुहर्रम के रोज़े हैं। चुनांचे मुहर्रमुल हराम की उसी बुजुर्गी और बरतरी की बिना पर आका मदरी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान के रोज़ों के बाद सब महीनों से ज़्यादा अफजल मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। और एक दूसरी हदीस में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्याम मुहर्रम में से एक यौम का रोज़ा दूसरे महीनों के 30 अय्याम के रोज़े के बराबर है। इसीलिए इस माह में हमें इस्तताअत के बक़द्र कसरत से रोज़े का अहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के रोज़े की हदीस शरीफ में बड़ी फजीलत आई है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़ा यौम आशूरा का है यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा है। हज़रत इब्न अब्बास से मनकूल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल के रोज़ों में सबसे ज़्यादा अहतमाम आशूरा के रोज़े का फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास

अब सब मर चुके, अब किसके लिए सर न कटाएं। ऐसे नहीं बिछड़े के जो अकबर चले जाएं, किस तरह से उस यूसुफ़े गुमगुश्ता को पाएं। है फ़र्क बसारत में कहाँ ढूंढने जाएं, बे उनके न खाने का न पीने का मज़ा है। फर्जंद सलामत हो तो जीने का मज़ा है। एक जाओ नेहज़ी ताबा कुजा रंज उठाए, राहत अब इसी में है कि जल्दी अजल आए। जख्मे जिगरों

किसका मुझे दाग दिखाया, क्या जानता था काक में गमखार मिलेंगे, ता हश्र ऐसे न वफादार मिलेंगे। मैं कहता था कट जाएगा जब तन से मेरा सर, सब लावेंगे और गुस्लो कफन देवेंगे मिलकर, बाबा का उठाएंगे जनाजा वाली अकबर, सो मर गए वो।

से रो पीट चुके, उनके अलम में हमको भी उसी तरह से रोना कोई दम में। अब जाते हैं गिर जाने को हम फौजे सितम में, फिर आने का यह हौसला बाकी नहीं हम में। जब जाते थे सब घेर के ले आते थे हमको, वो मर गए जो फेर के ले आते थे हमको। अब कौन है जो दौड़ के रोकेगा मेरी राव, जो पाँव पे गिरते थे कोई उनमें नहीं आओ। सदमे जो हैं मुझ पर कोई उनसे नहीं आगाओ, वल्लाह नहीं जीने का इब्ने असदुल्लाह। वो समझे कलेजे पे छुरी जिसके चली हो, अकबर ना हो दुनिया में हुसैन इब्ने अली हो। अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम। अब जाते हैं खंजर से कटेगा मेरा।

जिस वक्त मुझे जिबा करे फिर कहे नारी, रोना न सुने कोई ना आवाज तुम्हारी। बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरिया और जारी, जो करते हैं सब्र उनकी खुदा करता है यारी। हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोजे जजा पर। कह कर ये सुखन चाव के आंसू हुए जारी, छाती से लिपट भाई के जैनब ये पुकारी। ऐ सैयदे मजलूम बहन हो गई वारी, मैं जाने नहीं देने की हजरत की सवारी। तब जाइयो जब जी से गुजर जाएगी जैनब, हजरत ने कमर बांधी तो मर जाएगी जैनब। दुखियारी हूँ भैया ना मेरी आस को तोड़ो, सदके गई परदेश में भेना को न छोड़ो। बरगुश्ता जमाना हुआ मुंह

जैनब, कटवा के गला देख से मर जाएगी जैनब। इन बातों से जैनब की दिले साथ भरा आओ, रो रो के गले खारे बेकस को लगायाओ और पहुंच के आंसू ये मोहब्बत से सुनाया। तुमने भी तो है सब्र बहन बिरसे में पाया, हम हल्क पर लेते गे सितम दस्ते बला में और तुम रंजे असीरी का सहोरा है खुदा में। इस

हाथ उठाना मकबूल बहानी दरगाह खुदा में बनवाया है हैदर ने गला राय खुदा में माँ सब्र है सब्र तो है काम तुम्हारा दुखियारी हो बेचैनी है आराम तुम्हारा मारा गया हर एक गुलंदाम तुम्हारा।

देना पर लाना न कोई हर शिकायत का जबा पर कह कर ये सुकन चले खेमे से बाहर रानों में बपा हो गया हंगामा। मैं सर चिल्ला के कोई कहती थी अरे मेरे सरवर और कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना और सर पीटते पीछे चली जाती थी सकीना। पास उसके गए रोते हुए सैयद अबरार पर माया के क्या हाल है।

0: करते सफर है, हम भी वहीं जाते हैं जहाँ तेरा पिसर है। पैगाम जो देना हो सो दो वक्त सफर है, हम भी वहीं जाते हैं जहाँ तेरा पिसर है।
1: सामीन आप सुन

0: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में। फिल्म का नाम है ईमानदार। गीतकार हैं प्रकाश मेहरा और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।
1: और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्य से E0

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर।

0: जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सागर फिल्म का गीत सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार आर डी बर्मन।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अभी आप सुन रहे हैं सौदागर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कर्मा का, किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीतकार होंगे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे नाम फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार होंगे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नाम फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे 11 बजे दोपहर 1:30 पर, दोपहर 2:30 पर और रात 10:45 पर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। कलाकार हैं मोहम्मद असलम, संगत कलाकार हैं तबले पर डॉक्टर श्याम मोहन, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और स्पेनिश गिटार पर प्रीतम कुमार मिश्रा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गज़ल सुन रहे थे। कलाकार थे मोहम्मद असलम। संगत कलाकार थे तबले पर डॉक्टर श्याम मोहन, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और स्पेनिश गिटार पर प्रीतम कुमार मिश्रा। प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से किया गया। स्टूडियो घड़ी में 11:01 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

0: जोकर।
1: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
2: डॉक्टर जी एस त्रिपाठी एमडी मेडिसिन पूर्वी चंपारण से बोल रहा हूँ। एलर्जी एक जनमानस के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। रोजमर्रा के जीवन के कारण हम अपने जीवन पर बहुत सारा विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण जैसा कि नाक बहना, नाक बंद होना, कान में खाज खुजली होना, इसके अतिरिक्त पूरे शरीर में खाज खुजली इत्यादि होना, यदि इस तरह की गंभीर समस्या है तो तुरंत नजदीक के डॉक्टर से मिलकर के एंटी एलर्जिक दवाओं का घोल लें।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।

खुदागवाह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं रंजना कुमारी। इनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पे विनोद कुमार, नाल पे हैं राजीव कुमार भारती और बांसुरी पे समीर कुमार।

0: कल्याण।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा जी। मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाढ़ इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं 2 बार मुखिया बनी हूँ।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
5: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले, अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाजी का लोकगीत। कलाकार थीं रंजना कुमारी। इनके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पे विनोद कुमार, नाल पे राजीव कुमार भारती, बांसुरी पे समीर कुमार। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
4: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
5: डॉक्टर GS त्रिपाठी, MD मेडिसिन, पूर्वी चंपारण से बोल रहा हूँ। एलर्जी एक जनमानस के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। रोजमर्रा के जीवन के कारण हम अपने जीवन पर बहुत सारा विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। इस कारण जैसा कि नाक बहना, नाक बंद होना, कान में खाज खुजली होना, इसके अतिरिक्त पूरे शरीर में खाज खुजली इत्यादि होना, यदि इस तरह की गंभीर समस्या है तो तुरंत अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलकर के एंटी एलर्जिक दवाओं का
4: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
0: बहनों नमस्कार। आज आपके लिए कार्यक्रम लेके आई है रेडियो दोस्त राष्ट्रीय। बहनों अभी अपराध की बात करें तो संगठित अपराध के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। संगठित अपराध से तात्पर्य अपराधियों के एक ऐसे सुनियोजित और निरंतर काम करने वाले समूह से है जो मुख्य रूप से भारी आर्थिक या भौतिक लाभ कमाने के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये अपराध व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क या गिरोह के रूप में किया जाता है। ज़रूरत है हम लोगों को सचेत रहने की। जैसे ही हम जब बाहर निकलें तो अपने को सुरक्षित रख के निकलें। कहने का मतलब महंगी चीज, सोने चांदी के जेवर ना पहने और अपना सामान सुरक्षित रखें, हिसाब से रखें।

0: पहनो, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। जब भी हम घर से बाहर निकले, खाली पेट ना निकले, पानी का सेवन करते रहें। अगर पेट खाली होगा तो लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। लू से बचने के लिए आम के शरबत का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जिसे हम आम पना भी कहते हैं। आज हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता। मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई में कानून और समाज की भूमिका। वार्ताकार हैं वंदना कुमारी।
1: मानव तस्करी अर्थात किसी व्यक्ति को धोखे से लाकर, लालच देकर, दबाव बनाकर या जबरन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उसका शोषण करना है। मानव तस्करी मजदूरी, घरेलू काम, भीख मंगवाने से लेकर अवैध गतिविधियों और यौन शोषण के लिए किया जाता है। मानव तस्करी आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जटिल समस्या बन गई है। यह केवल एक अपराध ही नहीं बल्कि मानवता के विरोध किया जाने वाला घोर अन्याय है। आज भारत सहित पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग इस जघन्य अपराध का शिकार बन रहे हैं। इसका मुख्य कारण है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और जागरूकता की कमी। मानव तस्करी का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। अपराधी अक्सर ऐसे लोगों को अपना

अधिकार बनाते हैं, अच्छा भविष्य और करियर और अच्छी नौकरी का लालच देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाकर शिकार बनाते हैं। लड़कियां अपने सुनहरे भविष्य के लालच में इनके चंगुल में फंस जाती हैं। यहाँ ये तस्करी इनका बुरी तरह से शोषण करते हैं, इन्हें पैसों के लिए दूसरे अपराधियों के हाथ बेच देते हैं। इसके बाद इन लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से इनका शोषण किया जाता है। मानव तस्करी का शिकार हुए लोग पर इस कदर अत्याचार किया जाता है कि वह केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टूट जाते हैं। उसकी स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों का निडरता से हनन किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जटिल समस्या का केवल कानून व्यवस्था का विषय ना मानकर इसे सामाजिक चुनौती के रूप में भी देखा जाए। समाज के हर एक नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस घिनौने अपराध के प्रति स्वयं भी जागरूक रहें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। कहीं पर भी, किसी पर भी जरा सा भी संदेह हो, तुरंत सतर्क हो जाएं। ऐसे किसी भी तरह की कोई गतिविधि दिखे तो सबको अपना कर्तव्य समझते हुए तुरंत बिना किसी लापरवाही के उस पर नजर बनाए रखें, उस बारे में पूरी जानकारी लें तथा जरूरत पड़ने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। ऐसे मामलों में अक्सर लोगों की एक जरा भी लापरवाही किसी बड़े अपराधी को अंजाम तक पहुंचा देती है। हमारी आपकी सतर्कता और जागरूकता ही ऐसे जघन्य अपराधों का रोकने का एक अहम भूमिका निभा सकती है। अर्थात हम सब मिलकर मानव तस्करी जैसे और भी कई तरह के अपराध को रोकने का प्रयास इस तरीके से कर सकते हैं। मानव तस्करी को रोकने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, बाल श्रम, यौनी शोषण जैसे अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा बाल संरक्षण कानून बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा सरकार समय समय पर विशेष अभियान चलाकर तस्करी के गिराहों पर कार्रवाई भी करती रहती है। साथ ही पीड़ित के पुनर्वास की व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखती है। कानून अपराधियों को सजा देने का काम करती है, लेकिन कई बार पीड़ित लोग भय, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाते। ऐसे में प्रशासन को संवेदनशील के साथ उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। जांच, निष्पक्ष सुनवाई और कठोर दंड अपराधियों के मन में डर उत्पन्न करते हैं और भविष्य में अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले कई बार सोचे। व्यक्ति किसी समस्या से मजबूर होकर मानव तस्करी के चंगुल में फंस जाते हैं। इसका मुख्य कारण गरीबी है। मानव तस्करी के और भी कई सामान्य कारण हैं। गरीबी, आर्थिक संघर्ष से लोग जोखिम उठाते हैं और इस हालात में ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं। शिक्षा की कमी, कई लोग शिक्षा की कमी के कारण तस्करों की चालाकियों से अनजान होते हैं। सस्ते श्रम की मांग, उद्योग कम लागत वाले श्रमिकों की तलाश में होते हैं, जिससे शोषण का बढ़ावा मिलता है। कुछ सामान्य विधियों जिसका उपयोग मानव तस्करों द्वारा तस्करी के लिए किया जाता है। धोखा, नकली नौकरी के अवसर या झूठी वादे देना। जबरदस्ती, पीड़ितों या उनके परिवारों को धमकाना। व्यक्तियों का अपहरण कर लेना। गेमिंग, पीड़ितों का भरोसा जीतकर उनका शोषण करना। वर्तमान समय में कैसे मानव तस्करी जैसे जटिल समस्याओं की लड़ाई में कानून और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। जागरूकता से संबंधित गतिविधियों में अनुसंधान, रोकथाम के प्रयास और जनता को सूचित करने और कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक सामग्री शामिल है। नीति निर्माण, एक बार जागरूकता स्थापित हो जाती है तो अलग चरण उस ज्ञान का उपयोग करना है ताकि इस संबंधित नीतियों का प्रमाणित किया जा सके। इसमें कानून निर्माता, कंपनियों और

0: व्यक्तियों के साथ काम करना शामिल है, ताकि ऐसे कानून बनाए और लागू किए जा सकें। बचाव अभियान उन व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए होते हैं जो अक्सर जोखिम भरे और खतरनाक परिस्थितियों की दास्तां में हैं। इन व्यक्तियों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संयोग की आवश्यकता होती है और इन्हें शिक्षा और कानून द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। बचाव के बाद ऐसे लोगों को तत्काल सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षा, भोजन और चिकित्सा शामिल है। पुनर्वास द्वारा समस्या सेवकों को समर्थन प्रदान करता है, ताकि वे ठीक हो सके और समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल हो सके। इसमें आवास, चिकित्सा, देखभाल, परामर्श, जीवन कौशल, प्रशिक्षण और शिक्षा शामिल है। यह पीड़ित लोगों को स्वतंत्र प्रदान करती है और उनकी कमजोरियों को दूर करती है। सशक्तिकरण यह सुनिश्चित करता है कि समस्या से बच के लोग अपने पर नियंत्रण रखें। यह चरण आर्थिक अवसर, नौकरी, प्रशिक्षण और बचाए गए लोगों को कानून की सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। सशक्त व्यक्ति पूर्णतः दासता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं और अपने तथा दूसरे के लिए कानून सहायता करने में सक्षम होते हैं। सूचना देना। यदि किसी को अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों या बंधुआ मजदूर दिखे, तो तुरंत पुलिस या राष्ट्रीय मानव तस्कर हेल्पलाइन को सूचित करना चाहिए। कानून की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह मानव तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक एवं बहुमूल्य विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें उनके पूरक पक्ष, विशेषज्ञ और रणनीतियां शामिल हैं। तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय दायरा, तस्करों की जांच और अभियोजन के लिए सीमा पर सहयोगात्मकता दृष्टिकोण की मांग करता है। तस्करों को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए कानून सबसे मजबूत है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई में कानून और समाज की भूमिका। वार्ताकार थी वंदना कुमारी। और अब हम लोग गीत संगीत का आनंद लें।

बहनों, अब ना ही गाना सुनाने का वक्त है, ना ही आपसे बातचीत करने का। तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हम लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: इस श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। उद्योग जगत कार्यक्रम में

0: में कामगारों के हित के लिए सरकारी प्रावधान ईवीएम सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: सामाजिक सुरक्षा शब्द आज प्रचलन में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक संगोष्ठी 1936 में अमेरिका में हुई थी। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ उस सुरक्षा से है जिसे समाज अपने सदस्यों को संकट से बचाने के लिए प्रदान करता है। यह संकट ऐसी विपदा है जिसका सामना एक गरीब व्यक्ति, मजदूर नहीं कर पाता। सुरक्षा का तभी अनुभव हो सकता है जब व्यक्ति सुरक्षा या प्राप्त होने वाले सुविधाओं के प्रति आश्वस्त हो। व्यक्ति की मजबूती ही समाज की मजबूती होती है। इसी पृष्ठभूमि में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, सामाजिक सेवा आदि शब्दों का जन्म हुआ है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ आय की सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा तथा कार्य शक्ति की सुरक्षा से लगाया जाता है। भारतीय संविधान की नज़र में मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था के उच्च विश्वासों को भारत के संविधान में रखा गया है। मौलिक अधिकार एवं श्रमिक। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसमें श्रमिक भी सम्मिलित हैं, जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं श्रमिक। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 52 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। यह उच्च आदर्श एवं मौलिक अधिकारों का लक्ष्य यह है कि ये सिद्धांत भारत के सभी नागरिक हेतु, जिसमें श्रमिक भी सम्मिलित है, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर आधारित आदर्श शासन तथा समाज व्यवस्था का निर्माण करने हेतु राज्य को दिशा निर्देश देते हैं। राज्य के उद्देश्य एवं श्रमिक। राज्य सभी को जीवित रहने योग्य साधन प्रस्तुत करता है। समान कार्य हेतु समान वेतन, देश की संपदा का समान वितरण, शिशु एवं वृद्ध श्रम का निषेध, बाल और किशोर एवं स्त्री श्रम को विशेष सुविधा एवं सुरक्षा, मातृत्व सुविधा सुरक्षा एवं हितलाभ, श्रमिकों को जीवन व्यापी वेतन, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, मानवीय कार्य दशाएं जिसमें श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठे और वे अवकाश तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का लाभ उठा सकें, बेकारी, बीमारी, अपंगता, वृद्धावस्था एवं अन्य अपेक्षित दैविक आपदाओं के समय उन्हें सहायता एवं आय की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पौष्टिकता के स्तर का विकास। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी अन्य विशेष प्रावधान भी हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, सुरक्षा एवं न्याय का अधिकार। अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी विभाग, उद्योग अथवा कार्यालय में

बिना भेद के सभी को नियोजन के समान अवसर। अनुच्छेद 23 मानव का व्यापार दास्ता बेकार अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी भी बाधित श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 के 14 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों का यानी बच्चों का कल कारखाने में खदान में कार्य करने पर यानी नियोजन पर मनाही है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति सिद्धांतों का निर्देशन करती है जो प्रत्येक नागरिक स्त्री पुरुष को जीवन यापन के पर्याप्त साधन सुविधा और अवसर का उल्लेख है। राष्ट्र के समस्त भौतिक साधनों के स्वामित्व तथा अधिकार का जन सामान की भलाई हेतु पुनर्वितरण। संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का एक स्थान पर संचय न होकर समान वितरण। स्त्री पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन। स्त्री पुरुष एवं बच्चों को श्रम स्वास्थ्य एवं शक्ति को शोषण तथा दुरुपयोग से बचाना जिसमें कोई भी श्रमिक अपनी आर्थिक आवश्यकता के कारण अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य से अधिक श्रम करने को बाध्य न किया जा सके। बाल एवं किशोरों की नैतिक एवं भौतिक शोषण से सुरक्षा इत्यादि। अनुच्छेद 41 में कार्याधिकार शिक्षाधिकार एवं कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान करता है। इसमें व्यवस्था है कि राज्य इसमें अपनी आर्थिक शक्ति एवं विकास की सीमा के अंतर्गत कार्याधिकार शिक्षाधिकार एवं बेरोजगारी वृद्धावस्था बीमारी अपंगता एवं अन्य अनपेक्षित आवश्यकताओं के अवसर पर सार्वजनिक सहायता के अधिकार की प्राप्ति हेतु प्रभावी सामाजिक सुरक्षा विधान बनाएगा। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाओं एवं मातृत्व सुविधा सहायता तथा सुरक्षा का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों हेतु जीवनयापी वेतन का प्रावधान करता है जिसमें राज्य का यह प्रयत्न होगा कि वह उपयुक्त विधान अथवा आर्थिक संगठन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से खेतिहर औद्योगिक अथवा अन्य समस्त श्रमिकों हेतु जीवनयापी वेतन तथा ऐसी कार्य दशाएं निर्मित करें जिससे कि वे अत्यंत उच्च जीवन स्तर अवकाश एवं सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य अवसरों का लाभ उठा सके। राज्य कुटीर उद्योग केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सरकारी आधारों पर विकास की विशेष व्यवस्था करेगा। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना का लाभ बिहार निवासी वैसे कामगारों शिल्पकारों को मिलता है जो बिहार में रहकर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित कार्य क्षेत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के नियोजन में शामिल है। लोहारगिरी टोकरी निर्माण बैलगाड़ी ठेला हाथ ठेला बढ़ईगिरी रंगरेज रिक्शा चालन खिलौना निर्माण पशुपालन चरवाहा काशीदारी रस्सी निर्माण कुम्हारगिरी नाई हस्तकरघा मल्लाह मदारी छाता मरम्मती भेड़ बकरी पालन दर्जी पत्थर काटना फेरी ठठेरा पटरी दुकानदार ऑटो रिक्शा फल सब्जी बिक्री मूर्ति निर्माण कपड़ा रंगाई बुनाई एवं अन्य कार्य। इसमें आयु वर्ग 18 से 65 वर्ष की होती है। दुर्घटना का अर्थ है जो दृश्य मान हो। दुर्घटना के 180 दिन के अंदर वीडियो साहब या श्रम अधीक्षक या जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होता है। योजना स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 30,000 रुपया आश्रित को मिलता है। दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 1,00,000 रुपया आश्रित को मिलता है। पूर्णतः अस्थायी निषिक्तता की स्थिति में 75,000 रुपया और अस्थायी आंशिक चोट चपेट की स्थिति में 37,000 रुपया और दुर्घटना में चोट की स्थिति में

5,000 रुपया कम से कम अस्पताल में 5 दिन रहा हो। असाध्य रोग में चिकित्सा सहायता भी मिलती है, 7,500 से लेकर 30,000 तक। बच्चों की छात्रवृत्ति का भी योजना में प्रावधान है। 9वीं और 12वीं ITI में सालाना 1,200 रुपया इन बच्चों को मिलता है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। बिहार के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना की स्थिति में अनुदान का प्रावधान है। इसमें आयु वर्ग 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग आते हैं। प्रवासी मजदूर का अर्थ होता है जो अन्य राज्यों में अथवा विदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला मजदूर दुर्घटना से अभिप्रेरित है। पूर्ण अस्थाई अपंगता, अस्थाई आंशिक अपंगता, मृत्यु जो वाह हिंसा के कारण दुर्घटना के चलते दृश्यमान प्रकृति का हो, घटना की तिथि से 180 दिन के अंदर आवेदन देना होगा। BDO साहब, श्रम अधीक्षक, पंचायत प्रतिनिधि या शहरी निकाय के प्रतिनिधि के पास दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 1,00,000 रुपया अनुदान। पूर्ण अस्थाई अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपया, आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,000 रुपया और सभी जिले में श्रम अधीक्षक इस योजना के प्रभारी पदाधिकारी होते हैं। बिहार भवन एवं स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इसमें भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही आते हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, राजमिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, बिजली मिस्त्री, टाइल्स से फर्श बनाने वाले, सेंटरिंग और लोहा बांधने वाले, गेट ग्रिल वेल्डिंग करने वाले, मिश्रण बनाने वाले, महिला रेजा, रोलर चालक मजदूर, आधुनिक मशीन मजदूर, चौकीदार, प्लम्बर, फीटर, पत्थर तोड़ने वाले, ईंट निर्माण, रेलवे, हवाई अड्डा निर्माण के मजदूर और मनरेगा मजदूर, यानी कुल 20 प्रकार के मजदूर इसमें आते हैं। इसमें भी उम्र की सीमा 18 से 60 वर्ष तक की है और इस योजना में मजदूरों का निबंधन होता है, यानी निबंधन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी के यहाँ 50 रुपया के साथ आधार कार्ड, 2 फोटो, बैंक का खाता देना होता है। इसमें संचालित योजनाएं, भवन निर्माण हेतु 20,000, साइकिल क्रय के लिए 3,500 रुपया, औजार के लिए 15,000 रुपया, मृत्यु लाभ सामान्य अवस्था में 2,00,000 और दुर्घटना की अवस्था में 4,00,000 रुपया मिलता है। दाह संस्कार में 5,000 रुपया मिलता है। मातृत्व लाभ में प्रसव की तिथि से 90 दिन तक छुट्टी मिलती है और उस समय का मजदूरी मिलता है और ये 2 बच्चों के लिए ही मिलता है। बेटियों की शादी में, यानी 2 बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपया इसमें प्रावधान है। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर इस प्रकार के मजदूरों को पेंशन मिलता है और पेंशन 1,000 रुपया, पारिवारिक पेंशन 500 रुपया, अस्थायी अपंगता होने पर 75,000 रुपया, आंशिक अपंगता होने पर 50,000 रुपया, चिकित्सा सहायता 3,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है, शिक्षा सहायता शिक्षण संस्थानों का ट्यूशन फी बोर्ड देती है। यहाँ शिक्षण संस्थान का अर्थ सभी प्रकार का, मेडिकल कॉलेज हो या ITI हो, IIT हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उनका ट्यूशन फी बोर्ड देती है। पितृत्व लाभ, 2 बच्चे होने पर प्रति बच्चा 6,000 रुपया भी इसमें अनुदान मिलता है। बिहार राज्य में भवन निर्माण के क्षेत्र में 30-40% श्रमिक कार्य करते हैं। यह बिहार के मजदूरों में लोकप्रिय श्रम योजना है। श्रम जगत में 92% श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं। असंगठित क्षेत्र के
इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से श्रमिक वर्ग को

0: बहुत फायदा होता है।
1: उद्योग जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, कामगारों के हित के लिए सरकारी प्रावधान, ईवीएम सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देश का।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनी लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है पिया का घर। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है अनपढ़। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार मदन मोहन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 JP सेनानियों को सम्मानित किया गया।

0: लिए प्रेरित करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था, जब सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा संविधान के सम्मान और जन स्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना स्थित उनका आवास 1975 में आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, जहां लोकतंत्र की बहाली को लेकर रणनीतियां बनाई जाती थीं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई थी। श्री झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नामक युवक की मौत के मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने जांच अभियान के दौरान 47 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों हुए दुष्कर्म की घटना के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की याद दिलाता है, जब मुल्क में आईनी हकूक और जमहूरी कदरों को पामाल किया गया था।

0: इस मौके पर मुल्क और रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आयन पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत की हिफाजत करने वाले सेनानियों को याद किया। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला सम्राट चौधरी और मरकजी वजीर JP नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 JP सेनानियों को एजाज से नवाजा गया। इधर BJP डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के मौके पर 6 जुलाई तक पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर इमरजेंसी की मुखालफत करने वाले सेनानियों को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में इमरजेंसी एक सियाह बाब था, जब इक्तदार के नशे में जमहूरी इदारों, इजहार राय की आज़ादी और शहरी हकूक को संगीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत, आयन का वक़ार और आम लोगों की आवाज़ की ताकत को हमेशा सबसे ऊपर रखना ही जमहूरियत के सेनानियों के तईं खिराज अकीदत है। वहीं इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक के सरफहरिस्त लीडरों में से एक सिक्किम के साबिक गवर्नर गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना वाक़ उनकी रहायशगाह 1975 में तहरीक का अहम मरकज था, जहाँ जमहूरियत की बहाली के लिए हिकमत अमली बनाई जाती थी। आकाशवाणी से बातचीत में जनाब प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी जमहूरियत और शहरियों के हकूक पर बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इजहार राय की आज़ादी पर काबू पाया गया और अपोजिशन के लीडरों और कारकुनों को जेल में बंद कर दिया गया। जनता दल यू के कौमी कारगुजार सदर संजय झा ने कहा कि 25 जून हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए लगाई गई इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन के लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। जनाब झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक की क्यादत की थी और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार भी उस तहरीक के दौरान जेल में रहे थे। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के तहत बिलौटी गांव में गुज़श्ता दिनों हुए मुबैना इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के मामले की अदालती जांच शुरू कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट के सुबुकदोश जज विनोद कुमार सिन्हा की सदारत में तश्कील कमीशन ने आज सुबह जाए वारदात का दौरा किया। जनाब सिन्हा ने मुतासरा खानदान के लोगों और गाँव वालों से बात की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया, पुलिस सुपरिटेंडेंट राज समेत दिगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। गुज़श्त 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा, जहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, पटना, नालंदा और गया समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में लू की हालत बनी रहेगी। वहीं महकमा ने रियासत के शुमाली हिस्सों में बेशतर मकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया ज़िले के फुलकाहा थाना इलाके के तहत भारत नेपाल सरहद के पास पुलिस ने जांच मुहिम के दौरान 47 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय ज़िले के चकिया थाना इलाके के तहत गुज़श्ता दिनों हुए आबरू रेजी के मामले में पुलिस ने दो मजीद मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0

0: हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीकचो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।

0: कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेल्बर्ट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्रीमान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट को भी यही इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सके।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अमीन साबरी, फरीद साबरी, जसपिंदर नरूला और साथियों को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म अजनबी में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ব্যাপার

एफएम रेनबो पटना दिल से दिल तक और हमारा प्रोग्राम चल रहा है पटना अपडेट। दोस्तों गर्मी और

0: स्वादिष्ट आम।
1: 25 और 26 जून बिहार

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
3: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गईं, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है, और रात को जो महलूल होता है अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
3: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादी में पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
0: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
3: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष श्रोता शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहाँ हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे, रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी, वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी, 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी, अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना।

0: मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता
1: जी
0: है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं कि
1: हाँ
0: हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए, नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना है।
0: पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सब सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है।
0: अमूमन ऐसा होता है। अब
1: चलिए
0: तो
1: फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मज़े की बात चल रही है, तो गाने सुन लें।
0: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है।
1: हम्म,
0: सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मज़ा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताज़ा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहाँ पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल
1: क्या बात है
0: रिश्तों
1: भाई,
0: को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा, चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी ज़माना है,
0: जी,
1: अगर आपको फुर्सत नहीं है तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है, 6 मिनट पहले इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज़्यादा, उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं।
0: जी
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मज़ेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि

0: भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया। आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी, लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी। हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मज़े किए, डांस किया। बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे, आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफ़ी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं।

0: और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है, चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह,

0: रहता है चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं चूड़ी पहन लो, तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी,
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार।
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को।
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, और कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंटा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: यही

0: भारती रेडियो है, भारती का साथ है।
1: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
0: जी जी
1: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग
0: जी
1: भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
0: जी जी और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाए सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
1: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
0: जी
1: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
0: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
1: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
0: अच्छा लगता है।
1: क्या अच्छा लगता है इसमें?
0: दोस्तों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सबसे बड़ी बात।
1: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
0: जी।
1: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज मजबूर सलाम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम, आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा,
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?

0: मैम, अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
1: अच्छा, राजस्थान में कहाँ?
0: जी, भरतपुर में करते थे मैम।
1: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
0: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, 2-4 दिन हुए घर आए हुए अभी।
1: अच्छा, तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
0: जी मैम, बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
1: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
0: जी मैम।
1: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने
0: जी
1: से?
0: मैम, दिक्कत तो होती है। अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने। और फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रास्ते ही सुनना चालू कर देते थे।
1: अच्छा, आपको टाइम मिल
0: जी,
1: जाता
0: आप
1: था?
0: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था, करीब 10 बजे तक रात को।
1: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
0: जी मैम, आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को,
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
1: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
0: जी मैम, ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
1: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
0: जी मैम, उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है।
1: और उसमें से भी आप
0: हाँ
1: समय निकालकर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
0: नहीं,
1: है।
0: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन नहीं लगता हमारा। जो इस सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले,
1: अच्छी बात है,
0: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती है तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमराज जी का गाया हुआ गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ, आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी,
1: अपने ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
0: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पी ले पी ले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पी ले आएगी चुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक प्याली पी ले भाई पी ले पी ले, ओ सब मुसाफिर दिल के अच्छे, सब मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पी ले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या
1: बोल,
0: बात है।
1: और अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सबसे आने मिल देने, सबसे आने मिल देने ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिल देने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला ते समझे कोई कोई, ओ सबसे आने मिल देने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। श्रोता हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब से लेकर रात्रि 11:10 तक हम आपके साथ बने रहेंगे। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवाओं को संबोधित युवाणी से।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और शुरू होता है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त करिश्मा
1: और मैं हूं अंकिता, और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का इस खूबसूरत से सफर में। अब से अगले 1 घंटे तक हम दोनों रहेंगे आपके साथ, बातों में, एहसासों में और कुछ खास सोच के साथ। तो करिश्मा, आज हम किन-किन विषयों पर चर्चा करेंगे, हमारे दोस्तों को जरा बताइए तो।
0: बिल्कुल अंकिता, तो आज हम कार्यक्रम शुरू करेंगे एक प्रेरक पंक्ति के साथ।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: आगे चर्चा करेंगे संविधान हत्या दिवस पे, और साथ ही बात करेंगे डे ऑफ सी फेयरर पर। आगे हमारे खास सेगमेंट थ्रो बैक थर्सडे में सुनेंगे प्रिया

0: प्रीति के बीच बातचीत।
1: बिल्कुल, और बातों के बीच बीच में सुनेंगे प्यारे प्यारे गीत जो आपके मूड को और भी खुशनुमा बना देंगे।
0: और हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे स्पोर्ट्स अपडेट और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको सचमुच हैरान कर देंगे।
1: तो आइए दोस्तों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अंकिता, क्यों ना एक खूबसूरत गाने के साथ शुरू करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मन तरोताजा कर देना है।
1: जी

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है। तो वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कल होना हो से वसुंधरा दास और केके की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रेरक पंक्ति से।
4: बिल्कुल अंकिता, संविधान है देश की ताकत, लोकतंत्र की यह पहचान, न्याय समानता स्वतंत्रता का देता हम सबको सम्मान,
3: अधिकारों की देती रक्षा, कर्तव्यों को देता ज्ञान, हर नागरिक की राह दिखाता बनकर सच्चा पथ प्रदर्शक महान,
4: जाति धर्म का भेद मिटाकर एकता को देता संदेश, बंधुत्व की ज्योति जलाकर बढ़ाता भारत की परिवेश,
3: संविधान की गरिमा रखकर आगे बढ़े हमारा देश, इसके आदर्शों को अपनाकर सजे प्रगति का सुंदर परिवेश, आओ मिलकर शपथ ले कि संविधान का मान बढ़ाएं, न्याय समानता और सद्भाव से नए भारत का स्वप्न जगाएं। तो इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ चलिए सुनते हैं एक गाना।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनिया वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला, तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे फिल्म टेबल नंबर 21 से गजेंद्र वर्मा की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक।
4: तो दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के महत्व को समझाने का अवसर देता है। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे संविधान हत्या दिवस के बारे में। करिश्मा जी, सबसे पहले बताइए कि संविधान हत्या दिवस है क्या?
3: बिल्कुल अंकिता, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1975 में लगाए गए एक आपातकाल की याद दिलाता है। इस समय देश में नागरिक स्वतंत्रताओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कामकाज पर भी प्रभाव पड़ा था। यह दिन हमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।
4: बिल्कुल, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव है। जब संविधान की भावना को कमजोर किया जाता है तो लोकतंत्र भी प्रभावित होता है।
3: बिल्कुल, और संविधान हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार जैसे अनेक

0: मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अवसर देते हैं।
1: और साथ ही युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों और कर्तव्य को समझना चाहिए तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। जागरूक युवा ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं।
0: कई बार लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को तो भूल ही जाते हैं, है ना अंकिता?
1: बिल्कुल।
0: और संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी देता है। राष्ट्र की एकता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण और कानून का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
1: सचमुच संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: संविधान का सम्मान करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची नागरिकता है।
1: इसी संदेश के साथ हम
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म योद्धा से बी परा की आवाज में ये प्यारा सा गाना।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले विषय के बारे में, और ये विषय है उन लोगों के नाम जिनके बारे में हम रोज सोचते तो नहीं है, लेकिन जिनकी मेहनत हमारी डेली की जिंदगी को आसान बनाती है। आज 25 जून है और आज पूरी दुनिया एक ऐसे वर्ग को याद कर रही है जो खुद गुमनाम रहकर हमारी जिंदगी को रोशन करता है।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी फेरर, यानी कि वे लोग जो समुद्र में जहाजों पर काम करते हैं। ये लोग महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर दुनिया की एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाते हैं, और इसके सम्मान में आज 25 जून को पूरी दुनिया में डे ऑफ सी फेरर, यानी कि विश्व नाविक दिवस मनाया जा रहा है।
1: जरा सोचिए, आपके घर में जो मोबाइल है, कपड़े हैं, दवाइयां हैं, खाने पीने का सामान है, या फिर कार के पार्ट्स, इनमें से बहुत सारी चीजें समुद्र के रास्ते से ही हमारे देश तक पहुंचती है। यानी अगर समुद्र में जहाज ना चले तो दुनिया की सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्यों अंकिता?
0: बिल्कुल, आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी कि IMO ने के अनुसार दुनिया का लगभग 90% सामान का व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से ही होता है। यही वजह है कि नाविकों को दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया है।
1: लेकिन यह काम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कई बार उन्हें खराब मौसम, ऊंची लहरों और लंबे समय तक परिवार से दूर रहने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस साल 2026 की थीम भी इन्हीं चुनौतियों पर आधारित है। इस साल की थीम है कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड, कैरिंग द रिस्क, मतलब विश्व व्यापार को ढोना, जोखिम को उठाना।
0: यह थीम हमें याद दिलाती है कि नाविक सिर्फ सामान नहीं ढोते, वे अपनी जान, अपनी सुरक्षा और अपने परिवार से दूर रहने का जोखिम भी उठाते हैं। पूरी दुनिया का व्यापार चलाने वाले इन नाविकों के योगदान को पहचानना और इनकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना ही इस साल का महत्वपूर्ण विषय है।
1: आज के समय में कुछ समुद्री रास्ते ऐसे भी हैं जहां तनाव और संघर्ष की स्थिति रहती है। ऐसे इलाकों से गुजरते समय नाविकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर भी वे अपना काम पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ करते हैं ताकि दुनिया की जरूरी चीजें समय पर लोगों तक पहुंचती रहे।
0: 2026 में नाविकों के सम्मान सामने चुनौती कम नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, समुद्री लुटेरों का डर और युद्धग्रस्त इलाकों से गुजरने का दबाव, ये सब उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव डालती है। वे अक्सर बिना किसी गलती के इन टकरावों का शिकार बन जाते हैं।
1: एक और गंभीर मुद्दा है नाविकों का परित्याग। विगत दिनों यह समस्या बढ़ रही है। हजारों नाविकों को बिना वेतन, भोजन या चिकित्सा सुविधा के जहाजों पर ही छोड़ दिया जाता है। यह सिर्फ एक पेशेवर मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी है।
0: यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि IMO और अन्य संस्थाएं अब इस पर कड़ा रुख अपना रही हैं। वे न केवल नाविकों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि ऐसी नीतियां भी अब बना रहे हैं ताकि मालिकों को जवाबदेही तय हो सके।
1: आज हम उन पुरुषों और महिलाओं को सलाम करना चाहते हैं जो समुद्र में हमारी जरूरत के सामानों को पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वे महीनों तक अपने से दूर रहते हैं, खराब मौसम और अकेलेपन से लड़ते हैं। यह वाकई बहादुरी का काम है।
0: हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी काम के पीछे बहुत से अनदेखे लोग मेहनत करते हैं। सी फेरर्स भी उन्हीं अनदेखे नायकों में से एक हैं। वे कैमरे की रोशनी से दूर रहते हैं,

0: लेकिन उनका काम पूरी दुनिया को जोड़ कर रखता है। तो आइए आज हम सभी उनकी मेहनत, समर्पण और साहस को सलाम करें।
1: तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ।

0: तो दोस्तों, अभी हमने सुना फिल्म बादशाहों से तुलसी कुमार की आवाज़ में ये ट्रैक, और अब हम चलते हैं अपने आज के खास सेगमेंट की तरफ, थ्रोबैक थर्सडे। और इसमें हम जानेंगे प्रिया और प्रीति से कुछ बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि युवाओं के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि युवा प्रतिभा से आप लोगों को मिलवाएं, तो आज ऐसे ही एक प्रतिभा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आप अपने अध्ययन के साथ साथ नाटक के भी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रीति जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे आकाशवाणी पटना स्टूडियो में युवाओं के इस थ्रो बैक के खास सेगमेंट में।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले प्रीति जी, आप हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताइए।
2: मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ।
1: प्रीति जी, अभी आप बताएं कि मास

0: कॉम से आप पढ़ाई कर रही हैं, तो मास कॉम के पढ़ाई के साथ साथ आप और भी क्या चीज़ करती हैं?
1: मैं मास कम्युनिकेशन के साथ साथ नाटक भी करती हूँ, और अगर उसके अलावा फिर आप जाए तो मैं फिर पेंटिंग और डांसिंग ये सब भी करती हूँ।
0: प्रीति जी, आप मास कॉम की पढ़ाई कर रही हैं, तो मास कॉम की पढ़ाई अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, तो आपने मास कॉम की पढ़ाई के साथ साथ थिएटर में आने के लिए कैसे सोचा?
1: मेरा थिएटर में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था, मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो मास कम्युनिकेशन में जो मैं पढ़ाई करती हूँ मुझे थिएटर में भी वो सेम चीज़ मुझे सिखाया जाता है। तो जैसे मास कम्युनिकेशन में हमें सिखाया जाता है कि कैसे बात करना है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत सारी चीज़ें और रहती है। तो ऐसे ही हम लोग को थिएटर में भी सेम चीज़ सिखाया जाता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा परेशानी नहीं हुआ इन दोनों को, मतलब डिफरेंस करने में, दोनों मेरे को एक ही लगा।
0: बहुत अच्छी बात है प्रीति जी।

0: और बहुत सारी चीज़ें और रहती है। तो ऐसे ही हम लोग को थिएटर में भी सेम चीज़ सिखाया जाता है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा परेशानी नहीं हुआ इन दोनों को, मतलब डिफरेंस करने में, दोनों मेरे को एक ही लगा।
1: बहुत अच्छी बात है प्रीति जी। और आपने मास कॉम की पढ़ाई के साथ साथ थिएटर में आपने आने के लिए सोचा, ये काफी प्रेरणादायक है। तो प्रीति जी, आप नाटक के क्षेत्र में किस तरह की नाटक को आप करती हैं, लाइक अंग्रेजी, हिंदी या पार्टिकुलर किसी भाषा में?
0: मैं मैथिली भाषा में नाटक करती हूँ, और क्योंकि मैथिली मेरा मदर टंग है और मुझे बहुत पसंद है अपना भाषा, तो मैं मैथिली में ही अभी करती हूँ।
1: प्रीति जी, एक बात और मैं कहूंगी कि लोग जहां अंग्रेजी और हिंदी में ज्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन आप अभी बताएं कि मैथिली भाषा में आप अपनी नाटक को करती हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से आई, कैसे मिली आपको ये प्रेरणा?
0: मैं मिथिलांचल से हूँ, मधुबनी
1: अच्छा
0: की हूँ,
1: अच्छा
0: और मैं बचपन से ही मैथिली बोलते हुए आ रही हूँ। मेरी दादी, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मतलब मेरे पूरे घर में ही मैथिली का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं हमेशा से मैथिली बोलते हुए आई हूँ, और मेरे दादाजी भी ये सब मैथिली वगैरह सब में बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर रहे हैं। जो भी प्रोग्राम वगैरह होता था, तो उसके बाद फिर मेरे पापा ये सब में रहे, तो मैं उन लोग को देखती थी, तो मुझे थोड़ा ये सब को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं सोची कि क्यों ना, अगर मैं उस टाइम पे, मतलब मैं सोचती थी बचपन में कि अगर मैं कभी करूँगी नाटक या कोई भी प्रोग्राम, तो मैं अपने भाषा में करूँगी।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि मातृभाषा में करने पे उसका एक अलग ही मजा होता है।
0: हाँ,
1: प्रीति जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप पढ़ाई और थिएटर दोनों को साथ लेके चलें, तो आज के युवा जो हैं वो पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है उसमें अगर करना चाहे तो वो कुछ काफी बोझ महसूस करते हैं पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ भी करने में, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ नाटक को भी लेके चल रही हैं, तो दोनों के बीच का सामंजस्य आप कैसे बिठा के चल रही?
0: देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ में, तो आप दो चीज़ को बैलेंस करके आराम से चल सकती हैं। जैसे मेरा अगर इंटरेस्ट था नाटक में या डांस में, या मैं जो अगर पेंटिंग में बोलूं, तो अगर मेरा अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो अपने पढ़ाई और अपने नाटक दोनों को मैं आराम से बैठा के। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आज जैसे आजकल के युवा हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होगा इसी वजह से।
1: तो ये बात सही बोली कि अगर आपको अभी रुचि हो किसी क्षेत्र में काम करने के लिए, तो आप दोनों को एक साथ तालमेल बिठा के चल
0: जी
1: सकती हैं। अच्छी बात है प्रीति जी। आप पढ़ाई और नाटक के अलावा और भी खाली समय जो भी बचता होगा, तो क्या किसी और चीज़ में आपको अभी रुचि है?
0: हाँ, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू की किताब पढ़ रही हूँ, रंगमंच, वो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं मधुबनी पेंटिंग करती हूँ, मंडला आर्ट करती हूँ, और साथ साथ मैं अपने लोकगीत पे नृत्य भी करती हूँ।
1: अरे वाह, मतलब आपके अंदर चारों तरफ से क्रिएटिविटी कहा जा सकता है एक तरह से, वो भरा हुआ है। आपने मॉस काम की पढ़ाई के साथ साथ नाटक भी करती हैं, नृत्य भी करती हैं और साथ साथ पेंटिंग भी करती हैं, काफी अच्छी बात है। प्रीति जी, आप इसके अलावा जिस तरह से हमारे युवा हैं, युवा जो दोस्त हैं वो आपसे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्रिएटिविटी है उसको आप किस तरह से लेके चलती हैं अपने जीवन में, क्या कुछ सोचा है आगे फ्यूचर के लिए आपने?
0: मैं तो अभी जैसे मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मैं फ्यूचर का नाटक में जैसे मेरा इंटरेस्ट है, तो अगर मुझे मौका आगे भी मिले, तो मैं आगे भी और नाटक करूँगी। और जैसे अगर मैं अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं फिर आगे, मेरा एक गोल है कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, तो उस हिसाब से मैं लगी हुई हूँ, और शायद मैं वो कर लूँ।
1: प्रीति जी, वैसे आप ये जो कार्यक्रम है ये हमारे युवा श्रोता सुनते हैं, आपकी ये सेगमेंट को सुन रहे हैं आज के थ्रो बैक थर्सडे में, युवा दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक में भी अपनी अभिरुचि रखते हैं, नाटक के क्षेत्र में अपनी रुझान रखते हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे युवा श्रोताओं को?
0: मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी, अगर आपका मन है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो प्लीज आप नाटक करिए। क्योंकि नाटक सिर्फ एक नाटक नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करता है, आपका बॉडी पोस्चर ठीक करता है, आपका लिखने

0: का शैली, बोलने का शैली, वो सब ठीक करता है। तो आपका सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपका एक्स्ट्रा भी चीज़ आपके अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत काम आता है नाटक।
1: बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे युवा श्रोताओं को बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और प्रीति जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप नाटक जो सीख रही हैं, नाटक कर रही हैं, नाटक में जो रुझान रखती हैं आप, कहाँ से आप सीख रही हैं नाटक?
0: मैं तो अभी नाटक चेतना समिति में पहली बार विद्यापति समारोह होता है तो उसमें इसमें मैं पहली बार अभी नाटक की थी, ये मेरी पहली बार था, तो वहीं से मैं अभी सीख रही हूँ और आगे भी मैं सीखूंगी वहीं से।
1: प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे युवाओं को आपने प्रेरणा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आभार।
2: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: डॉक्टर जीएस त्रिपाठी, एमडी मेडिसिन, पूर्वी चंपारण से बोल रहा हूँ। एलर्जी एक जनमानस के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। रोजमर्रा के जीवन के कारण हम अपने जीवन पर बहुत सारा विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण जैसा कि नाक बहना, नाक बंद होना, कान में खाज खुजली होना, इसके अतिरिक्त पूरे शरीर में खाज खुजली इत्यादि होना, यदि इस तरह की गंभीर समस्या है तो तुरंत अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलकर के एंटी एलर्जिक दवाओं का घोल लें।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
4: मेक सम नॉइज़।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म किस्मत कनेक्शन से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये प्यारा सा गाना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के खास दिन के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाई जाती है। उनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे और 1989 से लेके 1990 तक देश का नेतृत्व किया।
1: सामाजिक न्याय, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पित पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनके विचार और कार्य हमें समानता तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
0: बातें तो होती रहेंगी दोस्तों, क्यों ना अगला ट्रैक सुना जाए।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलाकार से किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के कुछ रोचक तथ्य। क्या आपको पता है कि आज अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करता है, तो बहुत संभव है कि वह सामान पहले समुद्र के रास्ते ही सफ़र करता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज के आधुनिक जहाज़ों पर सफ़र लगभग 4,000 साल पुरानी एक खोज से जुड़ा है। और वो खोज क्या है? कंपास, यानी दिशा बताने वाला यंत्र।
1: हाँ, ये वही कंपास है जो स्कूल में ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया जाता है। इसकी कहानी बहुत रोमांचक है। करीब 200 ईसा पूर्व चीन में वैज्ञानिकों ने एक खास पत्थर खोजा जिसे लॉर्ड स्टोन कहते हैं, या एक नेचुरल मैग्नेट था। उन्होंने देखा कि यह हमेशा लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाता है। शुरुआत में तो इसका समुद्र में मतलब कुछ मेल नहीं था, बल्कि फेंग शुई और इमारतों की दिशा तय करने के लिए किया जाता था।
0: और यही लगभग 1100 शताब्दी में चीन के नाविकों ने पहली बार इसे समुद्री यात्रा में इस्तेमाल करने का शुरुआत किया। बाद में अरब व्यापारियों के माध्यम से यह तकनीक यूरोप पहुंची। फिर समुद्री यात्राओं में क्रांति आ गई। पहले नाविक सिर्फ चांद, सूरज और तारों को देखकर रास्ता तय करते थे, लेकिन बादल छा जाए या किसी दिन धूप ना दिखे तो रास्ता भटकने का खतरा रहता था। कंपास ने यह समस्या काफी हद तक खत्म कर दी।
1: यानी अगर कंपास न होता तो शायद दुनिया का नक्शा आज भी जैसा तैसा ही होता। इतिहासकार मानते हैं कि कंपास की वजह से लंबी समुद्री यात्राएं संभव हुई, नई नई समुद्री व्यापारिक राहें खोजी गई, अलग अलग देशों के बीच व्यापार बढ़ा और दुनिया पहले से कई ज्यादा जुड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आज के जहाज केवल कंपास पर निर्भर नहीं है, उनमें जीपीएस, सैटेलाइट, नेविगेशन, राडर, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाले आधुनिक सिस्टम लगे होते हैं।
0: और करिश्मा, क्या आप जानती हैं जीपीएस जहाज की सटीक लोकेशन बताता है?
1: बिल्कुल अंकिता, और
0: रडार जो है आसपास के जहाजों और बाधाओं को बताता है।
1: जबकि सैटेलाइट सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर बैठे कंट्रोल सेंटर से भी जहाज की निगरानी करने में मदद करता है।
0: और एक छोटी सी खोज से शुरू हुई कहानी आज पूरी दुनिया के समुद्र व्यापार की सबसे मजबूत नींव बन गई है। इसीलिए जब भी आप कंपास देखें, याद रखिए यह सिर्फ एक दिशा बताने वाला

यंत्र नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से एक है। तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं अगला गाना।

0: हमने सुना फिल्म विकी डोनर से विशाल दादलानी और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की।
1: फीफा विश्व कप 2026 के दौरान कनाडा निक के खिलाफ मुकाबले में कतर के मिडफील्डर असीम मबोदी ने एक खतरनाक टैकल किया था। इस टैकल के कारण कनाडा के स्टार खिलाड़ी इस्माइल कोने की टांग टूट गई। असीम मदीबो को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 5 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है।
0: साउथ अफ्रीका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार को ग्रुप ए के मैच में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। साउथ अफ्रीका पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंची है।
1: 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में प्रवेश कर लिया है। उसने गुरुवार सुबह ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। मियामी स्टेडियम में ब्राजील की ओर से विनीसियस जूनियर ने 2 गोल किया, जबकि 1 गोल मैथिमस कुन्हा ने दागा। स्कॉटलैंड में 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रहा है, लेकिन टीम एक बार फिर ग्रुप चरण से आगे बढ़ने में नाकाम रही।
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात जर्मनी का सामना इक्वाडोर से होगा। इक्वाडोर इंटरनेशनल फुटबॉल में जर्मनी को कभी हरा नहीं पाया है। वहीं तुर्की की भिड़ंत अमेरिका से सुबह 7:30 बजे से होगी। तुर्की इस टूर्नामेंट में अब तक 1 भी गोल नहीं दाग सका।
1: तो दोस्तों, घड़ी की समय की घड़ी हमारे कार्य के समापन की ओर चल पड़ी है, तो आज के लिए हमें विदा दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आज कार्यक्रम में हम सब गीतनादक आनंद लेब। गीतनाद सुनौती रेखा कुमारी संगे सुनब एक गोट वार्ता। बिखे होयत माछ मखान आ पान, ई थिक मिथिला के पहचान। ई वार्ता सुनेता मेधा कर झा। मुदा ओहि सबसे पूर्व किछु अपना में गप सब सेहो करब। देखू श्रोता मित्र, मनुख प्रकृतिक एक गोट अनुपम रचना थिक। प्रकृति आ मनुखक संबंध अटूट आ जीवनक मूल आधार अछि। मनुख सब छोट आ पैघ जरूरत लेल पर्यावरण पर निर्भर अछि। श्रोता मित्र, प्रकृति हमरा सबके जरूरत के सब संसाधन उपलब्ध कराबैत अछि। शुद्ध वायु, पीबा योग्य पानि, पौष्टिक भोजन आ दवाई रूपी औषधि। हमर धार, पोखरि, पर्वत आ जंगल पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित राखी मानव जीवनक रक्षा करैत अछि। अपना संस्कृति में सेहो प्रकृति के सदैव उच्च स्थान रहल अछि। हमसब एकर पूजा करैत रहलहुँ अछि। एहिठाम सूर्य के ऊर्जाक स्रोत, पृथ्वी के माता आ नदी के जीवनदायिनी कहल गेल अछि। प्रकृति के संरक्षण हमर संस्कृति के अभिन्न अंग रहल अछि। औद्योगिक क्रांति आ विकासक समय में मनुख प्रकृति के बड़ नुकसान पहुँचा रहल अछि। वनक कटाई, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन

साधन के दोहन, एहिसँ जलवायु संकट उत्पन्न भऽ गेल अछि। मनुख स्वयं के प्रकृति के मालिक बुझि लेलक अछि, जखन कि ओ स्वयं एकर एक कण मात्र अछि। जवाब में हमरा सबके बाढ़, सुखार, भूस्खलन, प्रचंड रौद, बरखा आदि के सामना करय पड़ि रहल अछि। प्रकृति हमरा सबके भौतिक संगे मानसिक आ आध्यात्मिक ऊर्जा सेहो दैत अछि, तैं एकर संरक्षण परम आवश्यक अछि। हमरा सबके मोन राखय पड़त जे हम सब तखने सुरक्षित छी जखन धरि प्रकृति सुरक्षित अछि। हमरा सबके गाछ वृक्ष लगाबऽ पड़त, ओकर रक्षा करय पड़त, प्रदूषण के कम करय पड़त, प्रकृतिजन्य वस्तु के बचाबऽ पड़त, ओकर रक्षा करय पड़त, तखने हम सब बची सकब। ई तऽ छल किछु अपना मे दुटप्पी। आउ अब हम सब कार्यक्रमक आंगन में प्रवेश करी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबै छी ई विद्यापति गीत। कलाकार छथि रेखा कुमारी।

0: एखन सुनि रहल छलहुँ ई विद्यापति गीत रेखा कुमारीके स्वरमे। हिनकासँ हमसब कार्यक्रममे आर गीतनादक आनन्द लेब, मुदा एखन सुनैत छी ई वार्ता। बिखेव अछि माछ मखान आ पान, ई थिक मिथिलाके पहिचान। वार्ताकार छथि मेधाकर झा। सुनल जाय एहि सम्बन्धमे हिनक विचार।
1: माछ मखान आ पान ई थिक मिथिलाक पहचान। मिथिलाके नदी मातृक प्रदेश कहल जाइत अछि। ई क्षेत्र अदौसँ जलाप्लावित क्षेत्र रहल अछि। ई हिमालयक तराईमे स्थित होयबाक कारण अनेक नदी प्रवहमान छथि। एकर निर्माणमे एहि नदी सभक अपूर्व योगदान रहल अछि। कारण एहिठाम आदि पुरुष महाराज निमि एहिसँ पूर्वमे सदा नीराक तट पर जखन निवास करैत छलाह, सदा नीरा माता सरस्वती के कहल जाइत छैक। जखन सरस्वती नदी अंतर्ध्यान भए गेलीह तऽ ओहि तट पर बसयवला लोकके कष्टक अनुभव होबय लगलनि। तखन ओ गौतम रहुगण के संग लय पूर्व दिस विदा भेलाह। ओहि समय ई क्षेत्र दलदलीय क्षेत्र छल, जे नदी द्वारा आनल गेल माटिसँ जलोढ़ माटिसँ बनल छल। ओ लोकनि एकरा देखि एहिठाम बसबाक निर्णय लेलनि। एहि दलदल के सुखयबाक लेल आ भूमि के पावन करबाक लेल ओ लोकनि एकटा विशाल यज्ञक आयोजन कयलनि। मुदा एहि यज्ञक पुरोहितिक भार महर्षि वशिष्ठ के देबय चाहैत छलाह। जखन हुनक खोज भेल तऽ ओ इंद्रक महायज्ञ मे लागल रहबाक कारण आबयसँ असमर्थता देखौलनि आ कहलनि जे ई यज्ञ समाप्त कए हम अपनेक यज्ञ करायब। ई सुनि निमि वापस आबि गौतम रहुगणक पौरोहित्यमे यज्ञ आरम्भ कए देल। महर्षि वशिष्ठ जखन अयलाह तऽ एहिठाम यज्ञ के चलैत देखि क्रोधित भय निमि के श्राप दए देल। ओ बहुत बुझयबाक प्रयास कयलनि मुदा ओ नहि मानलनि। तखन निमि सेहो विदेह होयबाक श्राप दए देल। दुनू गोटे विदेह अर्थात शरीर प्राण विहीन भए गेलाह। एहि विषम परिस्थिति की गौतम रहुगण यज्ञ नष्टक दुष्परिणाम सँ व्याकुल भए गेलाह। तखन हुनक मृत शरीर के औषध आ मंत्र द्वारा मंथन कयल गेल, जाहिसँ एक आन व्यक्तिक निर्माण भेल, जे कि ओ मथि के निर्माण भेल छलाह। तैं हुनक नाम मिथि राखल गेल आ पुनः यज्ञ सम्पूर्ण कए राज्य बसाओल गेल। ई राज्य मिथिला बसाओल गेल छल, तैं एकर नाम मिथिला राखल गेल। मिथिलाक पूर्वमे कोसी, पश्चिममे गंडकी, उत्तरमे साक्षात हिमालय और दक्षिणमे गंगा नदी छथि। एवं प्रकारे ई प्राकृतिक रूपसँ सदा सुरक्षित रहल अछि आ एहि सम्पूर्ण प्रदेशमे सब दिन जलक अधिकता रहल अछि। एहि कारणे एकरा मत्स्य देश सेहो कहल जाइत अछि। सम्पूर्ण मिथिला एकरा एकटा समतल भूमि अछि। प्राचीन मिथिलाक उत्तरी क्षेत्र हिमालय नीचा वाला भाग, जे वर्तमान में नेपाल में काट के मिला देल गेल, किछु पाथर क्षेत्र अछि। मुदा भारतक शासित मिथिला पूर्णतः समतल अछि। एहि क्षेत्र में प्रत्येक किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एकटा नदी प्रवहमान अछि। एहि में अधिकांश नदी में सालों भरि जल प्रवहमान रहैत अछि। वर्तमान में अनेक नदी पर विद्युत उत्पादनक कारण आब जलक कमी देखल जाइत अछि, तथापि बरसात में सब नदी अपन उफान पर रहैत अछि। मिथिला जल प्लावित क्षेत्र होयबाक कारण एहिठाम जलीय वस्तु सभक उत्पादन सुगमता सँ आ बृहद स्तर पर कयल जाइत अछि। तैं एहिठाम माछ मखान का चितुआ आदि बृहद स्तर पर पाओल जाइत अछि। माछ एहिठामक सबसँ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ रहल अछि। एहिठाम सब दिन माछ एकटा प्रमुख आयक स्रोत रहल अछि। बहुसंख्यक मिथिलावासी माछ किनकऽ खाइत छथि, जाहि लेल सब वर्गक माछक खेती करैत छथि। मिथिला वा तऽ बाढ़िसँ पीड़ित रहल अछि वा सुखाड़सँ। कहल जाइत अछि जे एक बेर 100 वर्षक लगभग रौदी पड़ि गेल छल, तैं कृषि कार्यक लेल राजा आ सामंत लोकनि कतेको पोखरि खुनबौलनि। एहिसँ खेतक

श्रोता मित्र, 25 जून 1975 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल के घोषणा कयने छलिए। एहि मध्य मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता आ प्रेस के स्वतंत्रता के निलंबित कऽ देल गेल छल। एहिसँ लोक अपन स्वतंत्रता आ अधिकार सँ संबंधित गप पहुँचाबऽ में विफल भऽ गेल छलाह। एहि दिवस के एखनुक सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनेबाक घोषणा केने अछि। ई दिवस ओहि कारी दिन के याद दियाबैत अछि। ई दिन ओहि लाखों लोकक यातना, कष्ट, पीड़ा के सेहो मन पारैत अछि। एखन कार्यक्रम में सुनबै छी अपने सबके ई देवी गीत। कलाकार छथि रेखा कुमारी।

श्रोता मित्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह देशक आठम प्रधानमंत्री छलाह, जे सतत देशक राजनीति आ सामाजिक आर्थिक स्थिति के बदलबाक लेल प्रयासरत रहलाह। हुनक जन्म यूपी में 25 जून 1931 के भेल छल। आगू 1989 में जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनल आ बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनलाह। हुनक कार्यकाल कै गोट निर्णय लेल प्रसिद्ध अछि। एहिमे मंडल कमीशन प्रमुख छल, संगहि प्रधानमंत्री बनैत पंजाब के समस्या के समाधान आ सिख के संग सुलह लेल प्रयास सेहो शुरू कयने छलाह। आब कार्यक्रमक समापन के बेर भऽ गेल अछि। पुनः अगला कार्यक्रम अपने सबसे भेंट होयत। प्रभात के विदा देल जाय। बेस्ता शुभ साँझ।

मैथिली कार्यक्रम भारती अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर था 621 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बज रहे हैं। हम आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोता, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण होगा और इसके बाद हम आपको कुछ फिल्मी नगमे सुनवाएंगे 6:10 पर। संस्कृत में समाचारों का प्रसारण 6:20 पर होगा। 6:30 पर आज सुनिए आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। सात बजकर 30 मिनट पर प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा। जिले की हलचल सुनेंगे 7:47 पर। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 और 9:15 पर खबरें प्रसारित होंगी। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे। हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही

भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा की कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:05 होने वाले हैं। थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण होगा।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय से भोजपुरी में समाचार सुनी। आज संविधान हत्या दिवस मनावल जा रहा बा। ई दिन 25 जून 1975 के लगावल गई आपातकालीन के याद दिलावेला, जब देश में संविधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यन पर बहुत गहिर असर पड़ल रहे। इस मौका पर देश और राज्यन में तरह तरह के कार्यक्रमन के आयोजन कैल जा रहा बा। राज्य भाजपा के ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल भेले। इस दौरान आपातकालीन के खिलाफ लड़ाई लड़े वाला 450 गो जेपी सेनानियन के सम्मानित कल गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की तैल चित्र पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देले। सभा के संबोधित कर श्री नड्डा कहले कि आपातकालीन के दौरान वो समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंग्रेजों के जमाने के बनावल मीसा कानून के तहत बिना कोनो कारण आ बिना कोनो अदालती जांच के 131,000 लोगों के जेल में बंद कर देले रही। वो कहले कि अंग्रेज भी इतना अत्याचार ना कैले रहन। केंद्रीय मंत्री आपातकालीन के समय पटना से शुरू भइल जन आंदोलन के याद करत कहले कि वो खुद भी यह संघर्ष के गवाही आ साथ रहल बान। वो कहले कि लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ लड़ाई के बिया बिहार के माटी पर ही परल रहे आ इहें से पूरा देश में आंदोलन के शुरुआत भइल रहे। श्री नड्डा लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारा आ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भइल भारी रैली के जिक्र करत कहले कि यह आंदोलन ने लोकतंत्र के वापस लावे के लड़ाई के एगो नया ताकत दिलस आ वह समय सरकार के जड़ हिला के रख देले रहे। केंद्रीय मंत्री कहले कि आपातकालीन के दौरान प्रेस के आज़ादी आ संविधान के सब मूल्यन के गला घोट देल गेल रहे। वो कहले कि लोकतंत्र के ई सिख बा कि जनता संविधान आ प्रजातंत्र के गला घोटे वालन के समय अइला पर मजबूती से जवाब देवेले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संविधान हत्या दिवस पर आपातकालीन के विरोध करे वाला लोकतंत्र के सेनानियन के नमन कैले वालन। सोशल मीडिया पर आपस संदेश में वो कहले कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकालीन ई करिया पन्ना रहे, जब सत्ता के घमंड में लोकतांत्रिक संस्था अपन बात कहे कि आज़ादी और नागरिक अधिकारण के भारी चुनौती के सामना करे के पड़ल रहे। मुख्यमंत्री कहले कि लोकतंत्र की रक्षा संविधान के आदर और जनता के आवाज़ के ताकत के हमेशा सबसे ऊपर रखल ही लोकतंत्र सेनानियन की असली श्रद्धांजलि बा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहले बड़न कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे करिया दिन बा। वो कहले कि कांग्रेस ओरी से लगावल गए आपातकालीन के दौरान विपक्षी नेता लोगन के जेल में ठूस दिल गए रहे आ मीडिया के आज़ादी पर भी रोक लगा दिल गए रहे। श्री झा पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत करत कहले कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वो आंदोलन के दौरान जेल में रहल बाड़न। भोजपुर जिला के शाहपुर थाना के क्षेत्र के विलोटी गांव में पिछला दिनन भइल कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नाम के जवानन के मौत के मामला में न्यायिक जांच शुरू कर दिल गई बा। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में बनल आयोग आज सवेरे घटना वाली जगह के दौरा कैलस। श्री सिन्हा पीड़ित परिवार और गांव के लोगन से बात कैले। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, DM तनय सुल्तानिया, SP राज के संगे

0: अरे दूसरा वरिष्ठ अधिकारी लोगन भी मौजूद रहले। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भागन में बिजोड़ गर्मी से लोगन के जनजीवन बेहाल बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक कई गो जगह पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के भभुआ सबसे गर्म जगह रहल। यहाँ के सबसे अधिका तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड कल गई। ओहिजा पटना के सबसे अधिका तापमान 40.6 डिग्री दर्ज कल गई। मौसम विभाग अपन अनुमान में कहले बा कि अगला 48 घंटा के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा आ गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम दक्षिण मध्य भाग में लू चले के आसार बा। दूसरा ओरी विभाग राज्य के उत्तर भागन में ज्यादातर जगह पर तेज हवा के साथ पानी बरसे के अलर्ट जारी कैले बा। अरवल जिला में मुहर्रम के दौरान शांति और व्यवस्था बनावे के रखे के खातिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के देखरेख में अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालल गई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संकेत। उमराव जान फिल्म में सुनिए आशा भोसले को, शहरयार के बोल हैं खयाम का संगीत।

फिल्म दर्द में भी आपने आशा भोसले को सुना, नक्श लैलपुरी के बोल और खयाम के संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है।

0: भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
1: प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना संविधान हत्या दिवसस्य अवसरे पूर्व प्रधानमंत्रिणा अटल बिहारी वाजपेयी वर्येण लिखितायाः कवितायाः पंक्तयः पठिताः। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी अवदत् यत् एषा कविता न केवलं पंक्ति संग्रहः अपितु आपातकाले लोकतंत्रस्य उपरि आरोपितायाः वेदनायाः श्वसनावरोधस्य प्रतिबंधानांच सजीव अभिव्यक्तिः अस्तीति।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् विश्वम् अधुना अधिक शस्त्रीकरणम् अधिक समाह्वानानां स्वीकरणम् सामाजिक माध्यम युगाय उपयुक्तां राजनीतिं च पश्यति। दक्षिण कोरिया देशे जेजु फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 इति सम्मेलने संबोधयन् डॉ एस जयशंकरः वैश्विक चिन्तानां निराकरणाय अधिक अन्ताराष्ट्रिय सहकार्यस्य आवश्यकताम् अपि उद्घोषयत्। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भारतस्य प्राचीन दर्शनम् उद्धृत्य अधिक सहकार्यपूर्ण विश्वव्यवस्थायाः निर्माणाय तमेव मार्गदर्शक सिद्धान्तं निर्दिष्टवान् च। हरियाणा राज्यस्य गुरुग्रामे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 इत्यन्तर्गते द्विदिवसीयं ब्रिक्स ऊर्जा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आरब्धम्। केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टरः अवदत् यत् आर्थिक वृद्ध्यर्थं सामाजिक प्रगत्यर्थं मानव विकासाय च ऊर्जा अत्यावश्यकी अस्तीति। वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिक्स वर्या अद्य प्रातः काले कराकस नगरे क्षेत्रं परितश्च 0.27 तीव्रतांकानां भूकंपानां कारणेन बहूनि भवनानि भग्नीभूतानि इति उक्तवती। तया आपत्कालस्य घोषणा च कृता। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् शक्तिशाली भूकंपानां श्रृंखलायाः अनन्तरं 32 जनाः मृताः, 700+ जनाः व्रणिताः सन्ति इति। एतन्निमित्तं उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च दुःखं प्रकटितवन्तौ। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमंत्रिणा मोदिना उक्तं यत् भारतं सर्वैः पीडितैः सह ऐक्येन स्थितमस्ति, सर्वेभ्यश्च यथासंभव साहाय्यं प्रदातुं च आश्वस्तिम् अददात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारते अमेजॉन संस्थायाः 48 बिलियन डॉलर इत्यस्य अभिलेख्य निवेशस्य स्वागतम् अकरोत्। श्रीमोदी नवदेहल्याम् अमेजॉन संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेस्सी इत्येतमपि मिलितवान्। अद्य प्रातः जापान देशस्य ईशान्य भागे 7.2 तीव्रतायाः शक्तिशाली भूकंपः अभवत्, येन न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः आहताः। इवाते प्रान्तस्य पूर्वतटे प्रायः 40 किलोमीटर मिते गांभीर्ये 6.9 तीव्रतायाः कंपनम् अभवत्। उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सभापतिश्च सीपी राधाकृष्णन वर्यः अद्य राज्यसभायाः नवनिर्वाचितान् पुनः निर्वाचितान् च 10 सांसदत्वेन शपथम् अकारयत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य यूनाइटेड किंगडम देशस्य लंदन नगरस्य त्रिदिवसीयां आधिकारिक यात्राम् आरभत। यात्रावधौ सः भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार अनुबंधस्य अग्रिम मासस्य 15 दिनांके प्रवृत्तस्य सहचर द्विगुण योगदान सम्मेलनस्य च कार्यान्वयनस्य सज्जतायाः समीक्षां करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तासु। विश्व पादकन्दुक क्रीडायाम् अद्य

0: नाम्टेरे नगरे दक्षिण कोरिया देशं विरुद्ध्य 1-0 इति अंकाभ्याम विजयं प्राप्य दक्षिण अफ्रीका प्रथमवारं फीफा विश्व चषकस्य निर्णायक चरणं प्रति प्रविष्टः। समूह अ क्रीडायां दक्षिण अफ्रीकायाः कृते एकमात्र गोल इत्युक्ते लक्ष्यभेदनं थापेलो मासेको इत्यनेन कृतम्। भारतदेशं विरुध्य बांग्लादेशः आईसीसी महिला टी20 विश्वचषके अद्य मैनचेस्टर नगरस्थे एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रीडांगणे समूह अ क्रीडायां स्पर्धिष्यते। क्रीडा भारतीय समयानुसारं सायं 7:30 आरप्स्यते। प्रियः श्रोतारः, मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। अद्य संविधान हत्या दिवसः आचर्यते। आपत्कालकाले लोकतांत्रिक मूल्यानां रक्षयन्त्रिभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्रद्धांजलिः समर्पिता। विदेश कार्यमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक समस्यानां मध्ये दृढतर सहयोगस्य आवाहनं कृतवान्। भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं गुरुग्राम नगरे ब्रिक्स ऊर्जा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आरभत। वेनेजुएला देशे एकस्यानन्तरम् अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः। इति वार्ताः।
1: बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन
3: एफएम पर समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाई। प्रदेश भाजपा की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के समय बनाए गए मीसा कानून के तहत बिना कारण और बिना न्यायिक समीक्षा के 1,31,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि पटना से शुरू हुए जन आंदोलन के वह स्वयं भी सहभागी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध लड़ाई का बीज बिहार की धरती पर पड़ा था और यहीं से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान के सभी मूल्यों का गला घोंट दिया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था, जब सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को कुचला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जन स्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। श्री झा पटना में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में आपातकाल पर अध्याय शामिल किया है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम से शामिल अध्याय में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एनसीईआरटी ने पहली बार स्कूल स्तर पर आपातकाल को विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसे लेकर देश भर में नई बहस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की किताब में आपातकाल पर सेक्शन शामिल कर नई पीढ़ी को कांग्रेस के काले कारनामों को जानने का मौका दिया है।

0: पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आगे कोई शासक लोकतंत्र की हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर सिंह पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही का आरोप सत्यापन के क्रम में सही पाया गया। पीएमसीएच के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग में प्राध्यापक डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नामक युवक की मौत के मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के डीआईजी सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। एफएम पर समाचार समाप्त हुए।
1: हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आफी के गीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हमारे प्यारे श्रोताओं के फरमाइश पर कुछ फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं सबके फरमाइश पर। गोला रोड से हैं गोला रोड सगुना मोर, दानापुर से हैं आशा, नम्रता, दीपक, राहुल, उज्ज्वल, प्रमोद, सुबोध, अमन, श्रिया, सब्जी बाग पटना से अमन, नवल, केशर, संधू, आनंद, दिनेश और आफताब आजाद। इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म सड़क का ये गीत। अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों में समीर के बोल हैं नदीम श्रवण के संगीत।

0: जवानी है।
1: ये सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम
2: आयुष्मान। ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

हेलो बिहार वालों, अरे हमने हेलो कह दिया, आपका राजेश आपको हेलो कह दिया, लेकिन नहीं, हम कहेंगे सब लोगों को नमस्कार है राजेश की तरफ से। और राजेश एक बार फिर से स्वास्थ्य पत्रिका, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका कहें तो अच्छा होगा, आयुष्मान लेकर आप सबों के घर आंगन में आ गया। जी हाँ, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हम यही चाहते हैं। हम बोले तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आ रहे हैं, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर रोहतास सासाराम की तरफ से। हाँ, ये इच्छा है कि सारे लोग, हाँ कोई भी बीमारी आपको तो हो ही नहीं, अगर हो जाए तो उससे निजात मिल जाए। लगातार आपके घर आंगन में आते हैं, विशेषज्ञों से मुलाकात करवाते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं और आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, हाँ सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, जब पूरा बिहार, पूरा झारखंड इसे सुनता है ना, और जब फोन करता है हमें इस नंबर पर 6206803040, हमने कहा 6206803040, तब हमें एहसास होता है कि ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान कितना कारगर साबित हो रहा है। आयुष्मान ये एक बहुत ही उम्दा नाम है, आयुष्मान भवा मतलब आप अच्छे से रहें, आपकी कीर्ति दुनिया में फैले। और इसी से संबंधित, इसी से नाम से संबंधित देश में स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड, जिस पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी होता है। हम इस बात की जानकारी हम दे रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, लगातार हम डॉक्टर रजत कालरा को बुलाते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आफ्टर ऑल राजेश केवल डॉक्टर रजत कालरा से ज्यादा बातचीत क्यों करवाता है। डॉक्टर रजत कालरा चाइल्ड कार्डियक सर्जन हैं, बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और किसी भी घर हाँ की जान जो होती है ना, वो बच्चे होते हैं। उस माता पिता से पूछिए जिनके गोद में किलकारी लेता हुआ बच्चा हंसता मुड़

0: मुस्कुराता है कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर उसी बच्चे को कहीं कोई बीमारी हो जाए हृदय से संबंधित, तो इससे बुरा कुछ भी उसके जीवन में नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हम डॉक्टर रजत कालरा को हमेशा बुलाते हैं और आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं कि अगर बच्चों में, आपके बच्चे में दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई रोग है, ये लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा बच्चा बिहेव कर रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, हृदय में छेद है, हाँ, तो परेशान ना हो, उसका इलाज भी आ गया है। और डॉक्टर रजत कालरा इस क्षेत्र के महारथी डॉक्टर हैं और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर रोहतास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत कालरा। अब इनसे हम जानकारियां इनके क्यों पूछें, हाँ, सीधे सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ, क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पे। और अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि, हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको, माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है,

0: तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है
1: 6206803040, 6206803040,
0: ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
2: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
2: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
2: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए,
0: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040, ये नंबर है, ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
2: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ, फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं।

0: थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट की बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की
1: अच्छा,
0: प्रॉब्लम।
1: एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे
0: देखिए,
1: हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं, 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। और अब आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे।
4: स्पेशलिस्ट बॉलिंग ऑप्शंस एंड
5: जयमाला।
6: जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: स्थानीय फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: fielding at long on. The next ball worked away on the onside. Deep mid-wicket should come into play. It's been played quite nicely, so it will only result in one. Firdaus was pushing hard, but Mustari was very quick to turn her down and tell her that let's keep it down to one. One ball.
1: अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। मैच का आंखों देखा हाल आप पुनः सुन पाएंगे 7:52 से। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाई।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: प्रदेश भाजपा की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के समय बनाए गए मीसा कानून के तहत बिना कारण और बिना न्यायिक समीक्षा के 1,31,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था।
3: मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था।
0: केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल के दौरान पटना से शुरू हुए जन आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह स्वयं भी इस संघर्ष के सहभागी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध लड़ाई का बीज बिहार की धरती पर पड़ा था और यहीं से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान के सभी मूल्यों का गला घोट दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही सीख है कि जनता संविधान और प्रजातंत्र का गला घोटने वालों को समय आने पर मजबूती से जवाब देती है।
3: हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब

0: किया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जनस्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये 25 जून जब आता है तो लोगों के लिए चिंता का दिन हो जाता है। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किया और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज देश में हम मना रहे हैं। जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं। इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है।
1: आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अपने संस्मरण साझा किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था।
3: 25 जून की अर्धरात्रि 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया और उसमें सभी बड़े बड़े नेता लोग सब लोग एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए। उस दौरान हमें भी गिरफ्तार करने काफी प्रयास किया गया, लेकिन नहीं हुए थे। फिर एकाएक कुर्की जब्ती हमारा कर लिया गया, तब मैंने जाकर के अपना गिरफ्तारी दिया था। और गिरफ्तारी देने के बाद जब मैं पटना में बाहर आया था तो बाहर के नाम पर पैरोल मिला था, तो उस पर आए थे और आकर के फिर इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका मैं निभाता रहा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किए जाने की यादें दोहराई हैं।
4: जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पुलिस सामने खड़ी थी और मुझसे सीधे पूछा, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाए? तो मैंने कहा कि भाई मेरी परीक्षा है, मेरी बात तो सुने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले तो थप्पड़ मारे, अंदर घुसे, तलाशी ली तो मेरे यहाँ से सारा मटेरियल मिल गया। आपातकाल हटाओ और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, सारे मिल गए। तो वहां से पीटते हुए ले गए हबीबगंज थाना। मैं जेल के अंतिम 9.5 महीने बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाया मैं।
1: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। श्री झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे।
5: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रहे इसी आपातकाल, और आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है। आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, उसी माइंडसेट में।
1: विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। मुंगेर के 3 नंबर गुमटी के पास स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा की ओर से आपातकाल के दौरान विरोध करने वाले सेनानियों का सम्मान किया गया। इधर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। अन्य जिलों में भी आपातकाल की वर्षगांठ को लोकतंत्र बचाओ के संकल्प के साथ मनाया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pune को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में आपातकाल पर अध्याय शामिल किया है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड।

0: नाम से शामिल अध्याय में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एनसीईआरटी ने पहली बार स्कूल स्तर पर आपातकाल को विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसे लेकर देश भर में नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भोजपुर कथित मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच से घटना का सच सामने आएगा। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी और न्याय होगा।
1: भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया साथ, क्योंकि न्याय मिले, कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाए।
0: इधर मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के डीआईजी सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर सिंह पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही का आरोप सत्यापन के क्रम में सही पाया गया है। पीएमसीएच के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग में प्राध्यापक डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मंडल ने कहा कि 24 जून को राज्य में 9068 मेगावाट के रिकॉर्ड बिजली की मांग को पूरा करने में विभाग सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है और लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। शेखपुरा, अरवल समेत विभिन्न जिलों में आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर, पटना सिटी समेत विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग पर पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहनी टोला में पुलिस ने 3 फरार अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इन सभी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अररिया जिले के रानीगंज और आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने विभिन्न मामलों के वांछित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर व्यवहार न्यायालय में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बंदूक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋचि पांडे ने आज पुनौरा धाम मंदिर निर्माण परियोजना के तहत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
3: सीतामढ़ी जिले के कई अभ्यर्थियों ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा के परिणाम में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। रूनी सैदपुर के अभिषेक आनंद और सुरसंड के राहुल कुमार का चयन उप समाहर्ता पद के लिए हुआ है। वहीं सोनवर्षा के कृष्णा कुमार और डुमरा के सुमेधा आर्यन का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए किया गया है। इसके अलावा बोखरा के जयानंद ठाकुर का चयन कारा अधीक्षक पद पर हुआ है। इन सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर बीते दिनों जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 3,227 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 298 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी रिचि पांडे और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जिले में बीते दिनों कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों

0: कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। जिले में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वहीं मॉनसून को देखते हुए जिले में संभावित बाढ़ की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। तटबंधों, सड़कों और संवेदनशील स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा सुरक्षा कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, राहत शिविरों की व्यवस्था, नावों की तैयारी तथा आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले के भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बीते दिनों सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। सांसद ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इधर जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बीते दिनों विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविरों में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया तथा आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों और आवेदनों का निष्पादन हर हाल में 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऐसे शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सीतामढ़ी जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिले में एक अनूठी पहल की गई है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण से तैयार 85 बेंच विभिन्न पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर उपयोगी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे।
3: तो इस तरह की समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठना ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
4: देखिए, अगर मैं आजकल के न्यूज़ चैनल की बात करूं तो मैं पहले बहुत न्यूज़ देखता था जी। आज मैं न्यूज़ देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
3: जी,
4: है।
3: फेड अप से हो जाते हैं हम।
4: फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं, न्यूज़ में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बताना ही चाहिए, वो दिखाना चाहिए
3: जी।
4: लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
3: वो खुद ही बोल देते हैं
4: हर चीज के, और जो गेस्ट होते हैं आपके जिनको आप बुलाते हैं
3: उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता।
4: तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। और जहां तक हमारे

0: दूरदर्शन की बात रही,
1: आपने डीडी न्यूज और नेशनल न्यूज को कवर किया है।
0: मैंने डीडी न्यूज में किया और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था।
1: क्या बात है
0: जी, जी। और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो या मनमोहन सिंह जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हो, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है
1: जी।
0: और आपके पास प्रेशर बहुत होता है
1: जी।
0: क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को, वहां प्रेशर ये होता है कि वहां जीरो एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती। तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे चार चार पांच पांच छह छह जगह
1: और सवाल जवाब करने
0: के लिए। और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव।
1: क्या बात है
0: जी,
1: जी।
0: तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहां एज प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का। तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले।
1: केवल सनसनी को
0: फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बाग सुनना चाहते हैं
1: और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है
0: जी।
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं
0: जी।

जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीताराम जी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था।
1: हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
2: लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
3: ओ जी,
2: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
3: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
1: क्यों, क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
3: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
1: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे,
3: हाँ जी।
1: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
3: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना,
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
3: मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
3: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहां से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा अच्छा,
3: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, बड़ी बुरी खबर है।
3: भला हो भाई गुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
2: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
3: ओए जिसनू राखे रब, तो उसनू चखे कौन।
1: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
2: लेकिन राम गोपाल जी,
1: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
2: अच्छा,
1: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
3: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
1: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? है? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
2: तो
1: एक और बुरी खबर है।
2: वो क्या है?
1: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
2: माय गॉड।
3: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं।
2: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
1: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है। जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय है, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट

0: भगवान को चला जाता है।
1: लेकिन यही तो कहा जाता
0: अरे
1: है।
0: अरे क्या कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है, जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादे हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। सब क्या उसी की मेहरबानी है। बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?

0: क्रेडिट रब को दिया जा रहा है, है? सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
1: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुठलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है बताइए आप?
0: ये जो जानवर हैं ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
2: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
3: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
2: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
4: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
2: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
1: फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहां है तेरा रब बता दो, कहां? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
2: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
1: चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं, ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है?
4: नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
2: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं, तुम भी, क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है, मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
4: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
3: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
2: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
4: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
3: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
1: भैया मुझे तो बख्श दो।
4: क्या बात कर रहे हो,
1: मुझे नहीं।
4: आप भी चलिए।
1: नहीं,
2: ना ही आओ तो अच्छा है।
1: हाँ,
2: भगवान की भी यही इच्छा है,
1: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
2: तो आ जाना आप दोनों, हाँ, मेरे घर।
3: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
4: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
3: सत श्री अकाल जी।
4: भाई भगवान दास, राम राम।
2: आइए आइए, आ गए आप, मगर ये क्या साथ में इतनी भीड़ दिया है?
4: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो।
3: चलो भाई,
2: ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
4: ठीक है,
2: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
4: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
3: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी, अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने?
2: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
4: शर्त वर्त यहाँ पर?
2: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
4: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
2: जिसने पाप ना किया हो।
4: ओहो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
2: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
4: हम क्यों धोखा धोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
2: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
4: रिश्वत।

0: से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
1: किसी लड़की पर बुरी नजर न डाली।
0: हम क्यों नजर डालेंगे, अब बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी।
1: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
0: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है, भीतर जाओ दर्शन करने।
1: जाओ अंदर जाओ दर्शन कर लो।
0: ठीक है ये चला।
1: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के।
0: दर्शन? अरे भगवान दास जी दर्शन की बात करते हो, हो गए हो गए हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो हो हो हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
1: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
2: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, अब वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मनमाने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।

0: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई। राहत कार्य
1: जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
3: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में

0: भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
3: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव के

0: समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2.5

करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती मुआहिदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तजारती मुआहिदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहिदों में सबसे जामे मुआहिदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती समझौते के निफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा अहम मादियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन की $48 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्स ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी। ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़िश्ता एक सदी में वेनेजुएला में आने वाले सबसे ताकतवर जलजलों में शुमार होता है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। कई इमारतों को खाली करा लिया गया, जबकि जलजले के असरात ब्राजील के अमेजोन इलाके में महसूस किए गए, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। इस दौरान वेनेजुएला की सदर ने जलजले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सताइश करते हुए कहा कि यह मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान तआवुन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताज़ियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी और जखीरा अंदोजी ज्यादा खतरात मोल लेने और सोशल मीडिया के दौर की मुनासबत से की जाने वाली सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली के लिए जेजू फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इख्तिलाफात पर जोर देने के रुझान में इजाफा हुआ है। और उन्होंने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से अपने आप में ऐसी इम्तियाजी खसूसियात की हौसला अफजाई होती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि COVID-19 दहशतगर्दाना वाकयात या इंतहाई मौसमियाती वाकयात जैसे चैलेंजों से निपटने की गरज से बैन अक्वामी ताउन और इश्तराक की जरूरत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर अतियात में मुबैना खुशबू से मुतालिक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ जोन के DG परवीन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि तीन अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक FIR दर्ज की गई है।
FIR में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा

या नुमाया नाम शामिल नहीं है। छह मुलजिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकती टीम SIT की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले अतियात के मामले में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग के मौके पर ईरान के पेट्रोलियम के वजीर मोहसिन पाकनेजाद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मवाक़े के बारे में गौर खोज किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुजाकरात, साझेदारी और बाहमी तौर पर मुफीद रवाबित के जरिए तवानाई की यकीनी फराहमी में इजाफे के लिए अहदबंद है। भारत ने आज ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा, नायब वजरा और सरकर्दा ओहदेदारों ने एक जगह जमा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वें मुश्तरका एलामिया को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारियत, इख्तरा, इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा और सलाह साजी से मुतालिक शोबों में ताउन की तौसीक की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमो, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफहात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबित 2026 का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 सफहात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट या इसकी तजदीद की फीस 3500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तत्काल के तहत इसकी फीस 6000 रुपये होगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 36 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये और 60 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये है। अगर 36 सफहात वाला पासपोर्ट गुम या खराब हो जाता है तो इसके बदले नया आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए 5000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 60 सफहात वाले गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट हासिल करने की फीस 6000 रुपये होगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें भारतीय रेलवे को मुख्तलिफ अकसाम की अशिया की बारबरदारी के लिए सबसे पसंदीदा जरिया बनाने के लिए मुजवजा इसलाहात पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाल ही में सीमेंट और नमक जैसी अशिया की तरसील के लिए तैयार किए गए खसूसी वैगनों की कामयाबी ने इस अहमियत को वाज़ेह किया है कि वैगनों का डिजाइन सनद की अमली जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। मखसूस अशिया के लिए तैयार करदा वैगनों ने सामान की लोडिंग, ऑनलोडिंग और नकलो हमल की कारकर्दगी में बेहतरी पैदा की है, जिसके नतीजे में रेल के जरिए माल बर्दारी का निजाम मजीद मौसर और पुरकशिश हुआ है। जनाब वैष्णव ने कहा कि डिजाइन की मंजूरी और इब्तदाई नमूने की तैयारी के लिए सख्त मेयारात अपनाने से भारत में आला तरीन मेयार के वैगनों की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। दिफा के शोबे में खुद कफालत की समत एक अहम संग मील हासिल करते हुए दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे DRDO ने मुल्क में ही तैयार करदा निट्रा कबल अज वक्त फजाई वार्निंग और कंट्रोल निजाम के लिए हतमी ऑपरेशनल मंजूरी FOC हासिल कर ली है। FOC सर्टिफिकेट्स आज बेंगलुरु में मुनाकिदा एक शानदार तकरीब के दौरान भारतीय फजाइया के हवाले किया गया, जिससे मुल्क की फजाई निगरानी और नेटवर्क पर मबनी जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा हुआ। इस तकरीब के मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मुल्क में ही तैयार करदा इस निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि इसने बालाकोट कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशनों में अपनी काबिल एतमाद कारकर्दगी को साबित कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के नए तकर्रुर करदा हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में वाकई बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपनी सिफारती असनाद पेश करने के बाद बाजाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदारती महल में असनाद पेश करने की तकरीब के बाद

0: दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारतीय वीजा दरखास्त मरकज IVAC का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के कामकाज का जायजा लिया और हुक्काम से मुलाकात की। इस मरकज में वीजा दरखास्त गुजारों की बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के शहरियों के लिए मामूल की वीजा खिदमात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सियाहती वीजा के लिए दरखास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएंगी। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। नायब सर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खिराज अकीदत पेश किया जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार के दिफा में साबित कदम रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आईन पर बराह रास्त एक हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिविल आजादियों को मुअत्तल कर दिया गया था, इजहार राय की आजादी को खत्म कर दिया गया था और सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और सामाजिक कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की निकात के दौरान किसी भी ऑपरेशनल कोताही के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी होनी चाहिए। वो आज अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे थे जिसमें सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिफाजती इकदाम, आफात से निपटने के इंतजाम और दिगर अहम इकदाम के लिए एक जामे और मरबूत मनसूबाबंदी का तरीक़ेकार अपनाने पर जोर दिया ताकि यात्रियों के लिए एक महफूज और यादगार यात्रा को यकीनी बनाया सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और शिमाल मशरकी रियासतों में कल मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज देर रात अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। ग्रुप ई के एक दिगर मैच में अमेरिका में ईस्ट रूदरफोर्ड के मकाम पर जर्मनी और इक्वाडोर आमने सामने होंगे। ये दोनों मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 बजे शुरू होंगे। बाद में कल सुबह सवेरे अमेरिका के शहर आर्लिंगटन में ग्रुप एफ के एक मैच में जापान का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह सवेरे 4:30 पर शुरू होगा। इससे पहले आज सुबह मॉन्टेरी के मकाम पर जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया पर 1-0 से जीत दर्ज की। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत के इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्दबुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: What was it doing or what were

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: के बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिलके काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उन

0: को दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों, बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था, और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया, और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रियाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए, और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे

जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे। उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काफी छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी, रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी, मगर इतनी सजा कैसी, ये ले शिकवे सभी रखिए।

बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

आज समझे।

0: अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखो,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी

जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

0: अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वी को बज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.5 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात।

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, अब वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन आया, कौन आया।

0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल सुर में ये गीत सुना, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत। फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा।

0: भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
2: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries.

हाथों में उतर जाती है। एक खाली कुर्सी, एक अधूरी सी चाय या किसी बात पर बेख्तियार मुस्कुराना। तब महसूस होता है कि कुछ लोग वक्त के साथ दूर